0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
1: और 90-97-61-60-02।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
6: कहाँ पर?
5: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, चवही खास, गोपालगंज,
6: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
5: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
6: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569650।
7: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
8: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: सुनो दिल से।

0: ठक ठक
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
6: संपर्क 99-393-65-930।
9: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: नमस्ते, निदेशक CBSE पब्लिक स्कूल बस डीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जिसमें आप अपने वार्ड का एडमिशन दिलाना चाहते हैं। वहाँ क्लासरूम में बच्चों के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बॉडी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। साथ साथ आप 10th और 12th के CBSE का रिजल्ट भी देखने का मौका मिलता है। यदि अबव 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस एवं रिजल्ट संतोषजनक है तो आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा जी। धन्यवाद।
5: Last 10th board result 2025, outstanding performance. 50 students scored above 90% and no students scored below 80%. Truly shandar achievement.
6: लगातार तीन वर्षों 2023, 2024 और 2025 में district topper in commerce stream देने का गौरव।
5: Visit करे CBSE Public School, बस्टीला खास गोपालगंज या contact करे 7633970104।
7: सुनिए,
8: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
7: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
8: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
9: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिद्म 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87-894-18744।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल अम्बेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज, अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710 30 9 92 या 90765065750।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, आप तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: रामू हरिया, कल तैयार रहिया लो पराली जलाए जले के बा।
5: ठीक बा भैया।
6: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दियल जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लागी।
7: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
6: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
7: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एक बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
6: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
7: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा करी हुआ जानकारी दे के।
6: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
8: 24 राज्यों में 160 से अधिक शहरों में 280 से ज्यादा स्कूल्स के साथ एजुकेशन में एक ट्रस्टेड नेम बिरला।
9: अब वही लेगेसी, वही एक्सेलेंस आ गया है आपके शहर गोपालगंज में।
8: इंट्रोड्यूसिंग बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशंस आर नाउ ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 7।
9: और खास बात, प्ले ग्रुप के लिए लिमिटेड पीरियड फ्री एडमिशन।
8: मॉडर्न एजुकेशन विद AC क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, लाइब्रेरी एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी।
9: बिकॉज लर्निंग इज बियॉन्ड क्लासरूम्स, म्यूजिक, डांस, योगा एंड जूडो क्लासेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑल टीचर्स आर BEd qualified and follow CBSE guidelines, ensuring quality education.
8: Visit today, Yadopur Road, Saraya Ward No. 1, Shambhupath, Saraswati Talkies ke paas Gopalganj.
9: Call now 775-994-9440 or 775-994-9441.
10: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388-8947-0 या 9198-8869-73।
12: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 097 06 575।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
4: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।

0: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
1: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
0: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
1: यहाँ उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, NEBOSH और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
0: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
0: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
2: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
5: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। सभी कार्यालयों में अब पदाधिकारी 1 बजे तक सुनेंगे जन समस्या। महीने में 2 दिन होगा सभी पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन। महिला की हत्या के मामले में 1 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हुई प्री सिटिंग। और साइबर ठगी के मामले में 1 आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किया है। इसमें बताया गया है कि सहयोग शिविर के लिए नोडल पदाधिकारी और वरीय पदाधिकारियों को नामित करें, साथ ही सभी प्रखंड स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय और जिला स्तरीय पदाधिकारी प्रत्येक कार्य दिवस को सुबह 10 बजे से अपराह्न 1 बजे तक निश्चित रूप से अपने कार्यालय में बैठेंगे तथा इस अवधि में कार्यालय के कार्यों के निष्पादन के साथ साथ आम जनता से मिलकर उनकी भी समस्याओं का समाधान करेंगे। कोई भी पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण कार्य उक्त अवधि के पश्चात ही रखेंगे। क्षेत्र में किए गए कार्यों के फलाफल का प्रतिवेदन भी अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे और क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम को लेकर भी जानकारी साझा करेंगे। इधर सामान्य प्रशासन बिहार पटना के तरफ से जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक महीने के प्रथम और तृतीय मंगलवार को पंचायत वार सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में 30 दिन पूर्व से आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था होगी। यह शिविर यथा संभव पंचायतों के पंचायत सरकार भवन में ही आयोजित होगा। जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन नहीं है, वहाँ पंचायत के उच्च या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसी निर्देश के बाद अब 19/5/2026 को गोपालगंज के सदर प्रखंड और माझा प्रखंड के सभी पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन होगा, जहां आम जनता के बैठने और पेयजल इत्यादि की व्यवस्था होगी। इस सहयोग शिविर में आयोजन के 30 दिन पूर्व से ही आवेदन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था कर दी गई है। निर्धारित शिविर के तिथि पर प्राप्त आवेदन पत्रों के निष्पादन से आवेदनकर्ता को अवगत भी कराया जाएगा। इस शिविर का उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लाना है। इसको लेकर आवश्यक प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस शिविर में उस पंचायत के जितने भी वार्ड हैं, उन सभी वार्डों से संबंधित आवेदन पत्र यदि निष्पादन हेतु अपर समाहर्ता गोपालगंज, भूमि सुधार उप समाहर्ता गोपालगंज एवं अंचल अधिकारी गोपालगंज एवं माझा के न्यायालय स्तर पर भी लंबित हैं, तो उन आवेदनों का निष्पादन इस शिविर के पूर्व हो जाना चाहिए। साथ ही निष्पादन की सूचना संबंधित परिवादी को भी दे दी जाएगी। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि परिवादी स्वयं शिविर में उपस्थित हो। प्रथम शिविर होने के कारण 19 दिन का समय मिल रहा है, परंतु अगले शिविर के 30 दिन पूर्व इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी ताकि किसी भी परिस्थिति में कोई भी आवेदन अनिष्पादित नहीं रहना चाहिए। वहीं बताया जा रहा है कि शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदनों को पंजीकृत किया जाएगा और उसे निष्पादित किया जाएगा। कटिहार थाना क्षेत्र में हुई एक महिला की हत्या के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि रविवार को कटिहार थाना क्षेत्र के अमही बाके गांव में महिला की हत्या उसके पति के द्वारा ही कर दी गई। पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने FSL की टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर अनुसंधान शुरू किया और इस घटना में प्रयुक्त चाकू को विधिवत जब्त किया गया और इस मामले में कटिहार थाने में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड के नामजद अभियुक्त मुंशी मियां पिता हनीफ मियां साकिन अमही बाके थाना कटिहार को गिरफ्तार किया गया, जो मृत महिला का ससुर बताया जा रहा है। इस हत्याकांड में महिला का पति अभी भी फरार है, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और इस कांड में शामिल अन्य आरोपियों की भी पहचान कर उन्हें भी गिरफ्तार करने की दिशा में पुलिस के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है। 9 मई को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निष्पादन के लिए आज व्यवहार न्यायालय के नए भवन के ग्राउंड फ्लोर में पक्षकारों और उनके अधिवक्ता गण के बीच प्री सीटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें व्यवहार न्यायालय के सभी न्यायिक पदाधिकारी गण पक्षकारों के बीच प्री सीटिंग कर बहुत सारे सुलहनीय वादों को निष्पादन योग्य तैयार किए। इसे आगामी 9 मई को निष्पादित भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार अनूप कुमार उपाध्याय ने MMCT वादों के चिन्हित करने एवं पक्षकारों के बीच प्री सीटिंग संबंधित आगे की कार्रवाई को लेकर भी बीमा कंपनी एवं दावाकर्ता के अधिवक्ता गण के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के सचिव के प्रकोष्ठ में बैठक करेंगे। इस बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों से न्यायालयों में लंबित MACT के निष्पादन योग्य संभावित वादों पर चर्चा भी की गई एवं इसकी एक सूची तैयार की गई है तथा अगली बैठक में उक्त वादों पर पक्षकारों से एवं बीमा कंपनी से वार्ता कर वादों को तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है, ताकि अगली बैठक में उक्त चिन्हित वादों की सूची निष्पादन योग्य वादों को तैयार किया जा सके। इधर साइबर थाना गोपालगंज के द्वारा आर्थिक अपराध इकाई के निर्देश पर एक म्यूल खाता से संबंधित मामले में त्वरित कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सूचना के अनुसार म्यूल खाता से आरोपी संदिग्ध लेन देन कर रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक साइबर के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया और मानवीय और तकनीकी जांच तथा आवश्यक सत्यापन के उपरांत संबंधित खाते के धारक की पहचान कर छापेमारी की गई और आरोपी अरुण कुमार पिता अमर मांझी साकिन वृंदावन सदासी राय के टोला थाना उचका गांव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि उक्त खाते का उपयोग साइबर ठगी के माध्यम से अवैध रूप से प्राप्त राशि के लेन देन के लिए किया जा रहा था। पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर इसे पूछताछ के बाद न्यायालय में उपस्थापन के लिए भेजा था, जहां से अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसमें संलिप्त अन्य व्यक्तियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए मानवीय और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने जनता से भी अपील किया है कि किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड से सावधान रहें एवं संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी थाने को दें, ताकि पुलिस समय पर आपकी सहायता कर सके। पंचायत निर्वाचन 2026 को लेकर अब गतिविधियां शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 2011 की जनगणना को दर्शाते हुए प्रपत्र 1 का प्रकाशन करने के लिए सचिव राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 1505 के आलोक में गोपालगंज जिले के 3110 वार्डों की ऑनलाइन प्रविष्टियां पूरी कर ली गई और इसको 18/5/2026 तक आपत्तियों को आमंत्रित किया जा रहा है। आपत्तियों का निष्पादन 4/5/2026 से 22/5/2026 तक होगा तथा अपील वादों का निष्पादन 11/5/2026 से 29/5/2026 तक किया जाएगा। आपत्तियां ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष एवं जिला परिषद सदस्य के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष दी जा सकती है। युवा रोजगार एवं कौशल विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को लेकर सभी संबंधित स्टेक होल्डर के साथ 5/5/2026 को जिला परिषद के सभागार कक्ष में सुबह 10:30 से 12:30 तक बैठक होगी एवं अन्य गणमान्य विशेषज्ञों के द्वारा एक कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमे जिले के प्रमुख नियोजकों, शैक्षणिक संस्थान एवं व्यावसायिक शिक्षण स्थानों के प्रमुख और कौशल विकास केंद्रों एवं अन्य संबंधित स्टेक होल्डर को आमंत्रित किया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के मामले में अपीलीय प्राधिकार से संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला परिषद सदस्य के लिए अपीलीय प्राधिकार जिला पदाधिकारी को नामित किया गया है। इधर नगर थाने में 6 महीने से अधिक समय से पड़े लावारिस वाहनों पर अब पुलिस ने निस्तारण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है। पुलिस ने इसको लेकर जानकारी दी है कि नगर थाना में कई ऐसे वाहन जो थाना परिसर में लंबे समय से बिना दावे के पड़े हुए हैं, इन वाहनों के वास्तविक मालिकों की पहचान के लिए परिवहन मंत्रालय एवं संबंधित इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से आवश्यक जानकारी संकलित की गई है। वाहन मालिकों को सूचित किया गया है कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर अपने वाहनों से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर थाना से संपर्क कर वाहन को प्राप्त कर ले, अन्यथा नियमानुसार आगे की कार्रवाई कर इन वाहनों का निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए पुलिस ने एक पूरी सूची जारी की है। सभी वाहनों की सूची और उनके मालिकों की सूची थाने पर लगाई गई है। उसमें अगर किसी भी व्यक्ति का वाहन है तो वे लोग शीघ्र ही नगर थाना से वाहन छुड़ाने के लिए संपर्क कर आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। जगतौली ओपी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया और 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने भोपतपुरा स्थित स्याही नदी 4 मुहानी एवं कोयरी गामा 3 मुहानी के पास 2 मोटरसाइकिल से कुल 53 लीटर देशी शराब को बरामद किया और 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक अहद हुसैन पिता नूर अंसारी, दूसरा अबू बकर अली पिता अली अकबर, तीसरा रंजन कुमार पिता नंद किशोर महतो, ये सभी हथुआ थाना क्षेत्र के मनी छापर गाँव के रहने वाले हैं। वही प्रदीप कुमार शाह पिता राजेंद्र शाह, साकिन डोमनपुर तथा मिंकू कुमार पांडे पिता जयराम पांडे साकिन पडरौना, ये दोनों जगतौली ओपी भोरे के रहने वाले हैं। इन पांचों को गिरफ्तार कर इनकी मोटरसाइकिल और शराब को जब्त करने के बाद पुलिस अब इन पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई कर रही है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने विशंभरपुर थाना क्षेत्र के सल्लेपुर मटिहिनिया बांध पर छापेमारी करते हुए 3 शराब तस्करों को पकड़ा है। इनकी 2 मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उनमें इताफ आलम और छोटे आलम विशंभरपुर थाना क्षेत्र के ही तिवारी मटिहिनिया गाँव के रहने वाले हैं। तो वही तीसरा आरोपी गुलाब सैनी है, जो विशंभरपुर थाना क्षेत्र के ही सिपाया ढाला का रहने वाला बताया जा रहा है। इनकी गाड़ी और शराब को जब्त करने के बाद उत्पाद पुलिस ने तीनों आरोपियों पर मामला दर्ज करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आने वाले समय में गर्मी और लू को ध्यान में रखते हुए जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हीट वेव से बचाव के लिए महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गई। इसको लेकर आम जनता की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और आवश्यक संसाधनों की तैयारी पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित करते हुए कहा है कि गर्मी के इस संवेदनशील समय में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग को विशेष रूप से अलर्ट रहने को कहा गया है तथा सभी सरकारी अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए पर्याप्त दवाइयां, ORS, बेड एवं चिन्हित कर्मियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद को निर्देशित किया गया कि सभी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड चिन्हित कर वहां जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएं, साथ ही एम्बुलेंस सेवाओं को सक्रिय रखते हुए त्वरित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि अस्पतालों में स्थापित कूलिंग रूम यदि सुचारू रूप से संचालित है तो उसका विधिवत निरीक्षण कर प्रमाण पत्र जारी करें। जिला पदाधिकारी ने पंचायती राज विभाग को निर्देश दिया कि सभी पंचायतों में सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था करें, चापाकल नल कूपों की मरम्मत कर उन्हें चालू रखने के साथ साथ जरूरत के अनुसार नए और अस्थायी प्याऊ भी स्थापित करें ताकि आम जन को पानी की समस्या ना हो सके। जिला पदाधिकारी ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे दोपहर के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए तथा गर्मी से बचाव के उपाय को अपनाएं। साथ ही उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सेविकाओं और जन प्रतिनिधियों को भी जागरूकता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार स्कूलों के समय में भी आवश्यकता अनुसार बदलाव करने एवं बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। कुल मिलाकर जिला प्रशासन द्वारा भीषण गर्मी से निपटने के लिए व्यापक तैयारी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सभी कार्यालयों में अब पदाधिकारी 1 बजे तक सुनेंगे जन समस्या। महीने में 2 दिन होगा सभी पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन। महिला की हत्या के मामले में 1 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हुई प्री सिटिंग। और साइबर ठगी के मामले में 1 आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
9: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स।

0: गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज।
1: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
0: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
1: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
5: कहाँ पर?
4: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
5: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
4: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
5: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
8: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
9: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिंजिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
6: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
7: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
6: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
7: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
7: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, AC हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
6: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल, CBSE पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक, सेशन 2026 से 27 के लिए, प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
7: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
6: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और CCTV कैमरा की सुविधा,
7: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा, 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता, हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 8002221969 या 9117018350।
8: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8634-48652 पे।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
6: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-39-51-51 पे।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो।

0: फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।

0: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रिजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पे जो बनने वाली हो सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
5: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
6: कहाँ पर?
5: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
6: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
5: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है।
6: तो देर ना करें, ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज, कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
7: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
3: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
9: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: इजाजत दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यही समाप्त करने की। मैं हूं मुनीश शर्मा और मेरे साथ हैं नीना हरकल। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं दोस्तों तो लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत। तमिलनाडु में टीवीके 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने प्रदर्शन की राजनीति पर भरोसा जताया। ईरान के ड्रोन हमले में संयुक्त अरब अमीरात में 3 भारतीय नागरिक घायल। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दल को 1 सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड पर आ चुकी है। पहले ही बताया गया था कि चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा के क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा। उस सीट की गिनती 24 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई सरकार हर संभव प्रयास करेगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
2: उधर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम ने 47 सीटें जीती। इससे जुड़ी और जानकारी हमारे संवाददाता से।
4: तमिलनाडु के सियासी पर्दे पर फिल्म स्टार विजय ने सुपरहिट एंट्री ली और उनकी पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। थलाइवा, जननायकन, मरसल, सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के नायक रहे जोसेफ विजय अब फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि असल जीवन में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके सामने राज्य के मतदाताओं के सपनों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है। 51 साल के अभिनेता को आज उनकी पार्टी के विधायकों द्वारा नेता चुने जाने की संभावना है। पार्टी गठबंधन सरकार के गठन को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं और विजय के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार बनाने और उसे बेहतर ढंग से चलाने की होगी, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
2: असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। भाजपा को 82 सीटें मिली, जबकि उसके सहयोगी असम गण परिषद एजीपी ने 9 सीटें और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10 सीटें जीती। दूसरी ओर कांग्रेस को 19 सीटें, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और रायजोर दल को 2-2 सीटें और टीएमसी को 1 सीट मिली। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतकर गठबंधन को पूरे राज्य में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। राज्यभर में लगभग सभी प्रमुख यूडीएफ नेता स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हुए। सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ से सीपीआईएम ने 26, सीपीआई ने 8 और आरजेडी ने 1 सीट हासिल की। विधानसभा में एक भी सीट न होने के बावजूद भाजपा ने इस बार 3 सीटें अपने नाम की। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। इसके घटक दलों में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 12 सीटें, भाजपा ने 4 सीटें जीती, जबकि अन्य सहयोगी दलों अखिल भारतीय, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम और एलजेके ने 1-1 सीट हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही।
5: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
5: देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही।
2: श्री मोदी ने कहा कि भाजपा का मंत्र है नागरिक ही भगवान है और पार्टी जनता की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि देश में एक नया सवेरा हुआ है और जनता ने भारत के महान लोकतंत्र, प्रदर्शन की राजनीति और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में अपना विश्वास जताया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की जनता को भाजपा और एनडीए पर अपना समर्थन और विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, असम और पुद्दुचेरी में पार्टी की जीत का स्वागत किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जीत को भय, तुष्टीकरण और घुसपैठियों को पनाह देने वालों के खिलाफ जनता की करारी प्रतिक्रिया बताया। श्री शाह ने असम की जनता को ऐतिहासिक हैट्रिक जनादेश के लिए बधाई दी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार द्वारा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और प्रगति शील राज्य के निर्माण के लिए किए गए अथक प्रयासों का सशक्त समर्थन बताया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत और जमैका के बीच साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल पर्यटन, खेल, मनोरंजन और बहुपक्षीय मुद्दों में संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में एलपीजी वितरकों के यहां आपूर्ति की कोई कमी नहीं हुई है और पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। कल दोपहर नई दिल्ली में हुई अंतर मंत्रालयीय बैठक में अधिकारियों ने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करने और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में प्रमुख अधिकारियों और मुख्य वार्ताकारों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत से निर्यात करने के लिए अधिक व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान के ड्रोन हमलों के बाद कल फुजेराह तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने युद्ध विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
6: सोमवार के हमलों ने 8 अप्रैल को अमरीका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद से हफ्तों से बनी शांति को भंग कर दिया। ईरान ने इस कदम को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि जलमार्ग में प्रवेश करने वाली प्रत्येक जहाज पर हमला किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाया जिससे फुजेराह में एक प्रमुख तेल संयंत्र में आग लग गई। एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि ईरान के संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाने की कोई योजना नहीं है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इन हमलों को हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है कि ये देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फुजेराह पर ड्रोन हमलों की ये खबरें ऐसे समय में सामने आई जब अमरीका और तेहरान के बीच युद्ध विराम वार्ता ठप पड़ी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: अमरीका और ईरान के बीच नई चेतावनियों और सैन्य कार्रवाइयों के दावों के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमरीका के जहाजों को निशाना बनाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश अनुकूल नीतियों के एक नए युग की शुरुआत करेगी। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा निर्धारित 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर और 4 गेंद में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। रॉयल रिकेल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गांगेय पश्चिम बंगाल सहित उत्तरी राज्यों के कुछ हिस्सों में दिन के समय गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
7: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम बंगाल में भाजपा की रिकॉर्ड जीत, यह आज सभी समाचार पत्रों की पहली सुर्खी है। असम पुदुचेरी में एनडीए गठबंधन के सर सत्ता का ताज सजने, तमिलनाडु में टीवीके के धमाल और केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत को भी मुख्य अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, छा गए बाबू मोशाय। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, बाबू मोदी शाय। तमिलनाडु में टीवीके की लहर को प्रकाशित करते हुए हिन्दुस्तान ने सुर्खी दी है, विजय की सुनामी में सियासी दिग्गज साफ। केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत पर पंजाब केसरी लिखता है, केरलम में कांग्रेस को सत्ता, सीएम पिनराई का इस्तीफा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही भाजपा की जीत पर नवभारत टाइम्स ने जीत के नायक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, असम में सत्ता की हैट्रिक। भाजपा के पक्ष में आए भारी जनादेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, बदला लेने के बजाय बदलाव के लिए करें काम को भी ज्यादातर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान ने जनादेश का संदेश शीर्षक से संपादकीय में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हाथों सत्ता फिसलने का विश्लेषण करते हुए लिखा है, अव्वल तो ऐसा यार की जरूरत से ज्यादा आलोचना तृणमूल को भारी पड़ी। दरअसल इससे संदेश गया कि पार्टी संदिग्ध वोटरों को बचाना चाहती है। होर्मुज जल क्षेत्र पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम से बढ़ता तनाव भी मुख्य समाचार पत्रों की सुर्खी बना हुआ है। और आंधी बारिश ने दिल्ली को दिलाई सबसे साफ हवा, 88 रहा AQI। मौसम के मिजाज पर ये है नवभारत टाइम्स के शब्द।
2: धन्यवाद मुनीश। और अंत में एक बार मुख्य समाचार फिर। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार। पुद्दुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत। तमिलनाडु में टीवीके 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने सुशासन की राजनीति पर भरोसा जताया। पश्चिम बंगाल के औद्योगिक निकायों और व्यापार संघों ने भाजपा की जीत का स्वागत किया। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
2: कहाँ पर?
1: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
2: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
1: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
2: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835556965।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
8: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
9: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
11: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
11: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
12: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज।
2: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
12: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
2: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तरा आ जाता है।
12: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
2: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: सूट पीस लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
1: जी हाँ, कमल श्री कमल श्री कमल श्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो।

0: दूं, गाना बजा दूं।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट,

0: और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करे 87-894-18744।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 62052-62112 पे।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
10: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
9: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
10: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395651 या 97097506575।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरगर्मी तेज, 7 मई को सम्राट कैबिनेट का विस्तार होने की संभावना। और पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में आंधी, बारिश और वज्रपात की घटनाओं में 12 लोगों की मौत। दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों पर आज भी आंधी और वज्रपात की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 294 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दल को 1 सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। इधर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री करगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। टीवीके राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सत्तारूढ़ डीएमके ने 59 सीटें हासिल की हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। दूसरी ओर कांग्रेस को 19 सीटें, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और रायजोर दल को 2-2 सीटें तथा टीएमसी को 1 सीट मिली है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती जबकि उसकी सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतकर गठबंधन को पूरे राज्य में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने केरलम विधानसभा चुनाव में 1 सीट पर जीत दर्ज की है। राजद प्रत्याशी पी के प्रवीण ने कुथु परम्बा सीट से विजय हासिल की है। पार्टी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने राजद उम्मीदवार की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पार्टी की केरलम इकाई को बधाई दी है। गौरतलब है कि राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने पार्टी प्रत्याशी श्री प्रवीण के समर्थन में कई सभाएं और रोड शो भी किए थे। इधर केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 30 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 18 सीटें मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह जीत कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। श्री मोदी दिल्ली स्थित भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में आयोजित समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह परिणाम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की जीत है।
1: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है।
1: आप सबको कहा था गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल, आज माँ गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की सराहना भी की। इस अवसर पर श्री नवीन ने चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की जनता को भाजपा और एनडीए पर अपना समर्थन और विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मिली यह शानदार जीत पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास और समर्पण का परिणाम है।
2: जो ऐतिहासिक समर्थन हमारे देवतुल्य जनता ने, भारत की यशस्वी जनता ने इन 5 राज्यों में जो हमें समर्थन दिया है, उसके लिए मैं हृदय की गहराई से उन तमाम 5 राज्य के लोगों को अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारे नेतृत्व के प्रति, भाजपा और एनडीए के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है।
0: विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व पर अपना पूर्ण भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि यह जनादेश पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में विकास, सुशासन और जन कल्याण के कार्यों को नई गति प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भाजपा की जीत पर कहा कि यह जीत जनसेवा, सुशासन और विकास के प्रति पार्टी नेतृत्व के अटूट समर्थन का परिणाम है। श्री चौधरी ने इसके लिए पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी की जनता के प्रति आभार जताया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जीत का श्रेय गरीबों के मसीहा, कर्मयोगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जाता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बंगाल में भगवा लहरा गया है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति का किला ध्वस्त हो गया है। भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रभारी और पूर्व मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की शानदार और ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं को समर्पित है। उन्होंने कहा कि जनता ने टीएमसी के भय की जगह प्रधानमंत्री श्री मोदी पर भरोसा कर जनादेश दिया है।
3: पश्चिम बंगाल की जनता उनके 15 वर्षों के कुशासन से तंग आ चुकी थी, उनकी निर्मम सरकार से तंग आ चुकी थी, लोगों के अंदर भय का एक माहौल बना दिया था। पश्चिम बंगाल की जनता ने जिस प्रकार का जनादेश देने का निर्णय किया, और वो बहुत साफ है कि भय से अब बंगाल की जनता बाहर आ गई।
0: हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मेहनत का परिणाम है। वहीं लोजपा रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार 7 मई को होने की संभावना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया जाएगा। दिल्ली प्रवास के बाद कल पटना लौटे श्री चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की और मंत्रिमंडल विस्तार पर विमर्श किया। माना जा रहा है कि इस दौरान संभावित मंत्रियों के नामों और विभागों को लेकर भी चर्चा हुई है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने एनडीए के घटक दलों के प्रमुख नेताओं से भी मुलाकात की। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इस दौरान इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चलने की संभावना है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के अररिया, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों मधेपुरा, सहरसा, सारण एवं सिवान जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर कल पटना, गया, सिवान, दरभंगा, अररिया और कटिहार समेत आसपास के कई जिलों में तेज आंधी के साथ हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज आंधी के कारण कई स्थानों पर बिजली के खंभे और पेड़ उखड़ गए। कई स्थानों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होने से आवागमन भी बाधित हुआ है। वहीं इस बारिश से खेतों में लगी फसल के साथ आम, लीची और सब्जियों को नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान आंधी, बारिश और वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो गई। पूर्वी चंपारण जिले में 5, औरंगाबाद में 4 और गया जिले में विभिन्न घटनाओं में 3 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन घटनाओं पर शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का निष्पादन लोक अदालतों के माध्यम से करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने एक लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रदेश के जिला न्यायालय ट्रैफिक चालान से जुड़े मामले का निपटारा करना सुनिश्चित करेंगे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित पुरुष T20 प्रतियोगिता के तहत अलग अलग स्थानों पर खेले गए मैच में बेगूसराय, खगड़िया और कटिहार की टीमों ने जीत दर्ज की है। बिहार यूथ फाउंडेशन महिला T20 क्रिकेट लीग का आयोजन करेगा। इसके लिए 10 मई को पटना के दानापुर में चयन शिविर का आयोजन किया जाएगा। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत महेंद्रू स्थित एक लॉज में छापेमारी कर पुलिस ने हवाई फायरिंग के आरोपी विशाल कुमार उर्फ राजा कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से ऑटोमेटिक पिस्तौल और कारतूस बरामद किया गया है। पिछले दिनों विशाल कुमार का पटना में हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ था। इधर अगमकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत नंदलाल छपरा मोड़ के पास पुलिस ने छापेमारी कर 10 किलो से अधिक गांजा के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, बंग भूमि में खिला कमल, केरल ने कांग्रेस को चुना। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर लिखा है, बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार। दैनिक भास्कर ने तमिलनाडु के चुनाव परिणाम का शीर्षक बनाया है, 2 साल पहले पार्टी बनाई और 64 साल पुरानी द्रविड़ राजनीति की जड़ें हिला दी। प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, आज वर्षों की साधना सिद्धि में बदली, गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल ही कमल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रचा। असम में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भाजपा तैयार। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत। तमिलनाडु में टीवी के 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरगर्मी तेज। 7 मई को सम्राट कैबिनेट का विस्तार होने की संभावना। और पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में आंधी बारिश और वज्रपात की घटनाओं में 12 लोगों की मौत। दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों पर आज भी आंधी और वज्रपात की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन 2:00 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
3: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
4: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403। सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
6: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। CBSE पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक। सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
0: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
6: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और CCTV कैमरा की सुविधा,
0: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता, हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 8002221969 या 9117018350।
7: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
8: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
7: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
8: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
7: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
8: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
9: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
4: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
10: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम। मैं बदस्मो चारेशम में।
2: जी मैम, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायर एमपी से।
1: जी जी, क्या हाल चाल है सुनील जी?
2: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे मैम शो का इंतजार करते हुए मैम, तो टाइम हो गया तो हम सोचे चलो अभी फोन लगाते हैं, फोन भी लग गया मैम।
1: चलिए बढ़िया है। गाना कौन सा सुन रहा है आज आपको?
2: जी हमको सुनवा दीजिएगा फिल्म जीत से भगवान के बोले तू धरती में जाए जहाँ पी रहे तेरी खुशबू से और सुनवाएंगे किसने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: ओके, तो प्ले करेगा ना?
2: ओके मैम।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सो मैं कॉल किया।

0: हाँ अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
0: मैं मोहम्मद यूसुफ सिपाहियाडाला अपना मेडिकल लाहौल से बोल रहा हूँ
1: जी। कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया है, अभी फोन लगाए थे तो कट गया, नेटवर्क नहीं था।
1: जी जी, बारिश हो रही है ना, शायद इसके वजह से नेटवर्क सही नहीं है।
0: यहाँ पर भी सिपाहियाडाला में बहुत जोरों से बारिश हो रही है, 2 घंटा हो गया लगभग।
1: हाँ यहाँ भी वही हाल है।
0: हाँ मौसम तो बहुत खराब है, अब का कीजिएगा,
1: क्या करेंगे, काम तो करना ही है।
0: ये है कि गेहूं के दौरी हो गया।
1: हाँ हाँ हो गया, लेकिन बारिश हो गया तो खेत के लिए भी सही है। हाल हो जाएगा।
0: हाल हो जाएगा, बिचड़ा वगैरह गिरेगा गेहूं का, धान का।
1: हाँ जिसको गिराना होगा वो गिरा देगा, सही रहेगा उसके लिए।
0: तब हम यही कहेंगे कि आप हमको इसी बरसात में गाना सुनवा दीजिए।
1: जी बता दीजिए नाम।
0: ये कह रहे हैं कि बेमौसम बरसात हुई, अभी बरसात का मौसम नहीं है।
1: जी जी,
0: बेमौसम बरसात हुई है, कुछ तो ऐसी बात हुई है, अपना सब हम भूल गए जब से सोनी जी से बात हुई है। हाँ तो जारे जारे उतारी बदरिया, यही
1: आवाज कट गया, एक बार और बताइए।
0: जारे जारे उतारी बदरिया
1: जी,
0: इसी गाने को सुनवाइएगा
1: और डेडिकेट भी करिएगा।
0: हाँ अपना मेडिकल हॉल के सभी स्टाफ और खास कर कन्हैया जी जो फौजी से रिटायर किए हैं उनको सुनवाइए।
1: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी।
0: हाँ ठीक
1: ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोना कॉल के जी।

0: एडमिशन फ्री।
1: कहाँ पर?
0: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
0: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
1: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
2: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए चले के बा।
3: ठीक बा भैया।
4: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
5: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
4: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
5: अरे हमरा तो जानकारी ना रहल कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावो तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
4: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। इसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसा पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
5: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
4: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
0: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
10: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
1: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
6: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराश आ जाता है।
6: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9932 1308।
11: ब्रेक के
3: बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: जी, बहुत है आपका रेडियो रिमझिम नंबर से आ रहे समय।
11: सोनी मैम प्रणाम।
12: जी प्रणाम,
11: क्या हाल रहा है?
12: बिल्कुल बढ़िया, रो बताए कैसा बानी?
11: ठीक बानी। आज क्या बात, कभी स्विच ऑफ, कभी नेटवर्क या कभी चालू, क्या हो रहा है?
12: पता ना, बारिश होता तो शायद नेटवर्क इशू हुई।
11: कभी बंद बता रहा है, कभी नेटवर्क
12: ना, रिकॉर्डिंग तो शुरू ही हुआ है 11:05 में बारिश की वजह से, लेकिन उसके बाद अगर बंद चालू बता रहे तो मतलब नेटवर्क इशू होगा।
11: तो ये बारिश हो क्या अभी भी?
12: काफी भयानक वाला।
11: अच्छा, सब सुनाई कोई सब
12: बढ़िया? धनेश मिश्रा बात करते हैं।
11: हाँ हाँ हाँ हाँ, आज कौन है भोजपुरी में बात करेगा बात?
12: चलिए बढ़िया बात,
11: लौड़ो भोजपुरी में कमेंट करनी बड़ा बढ़िया लगेगा।
12: अच्छा,
11: अभी हमने तो मजबूरी बना कि हिंदी आदमी बोले ला तो भोजपुरी। अच्छा, इतना अच्छा कौन शब्द बा?
12: कोनो भाषा नहीं है भोजपुरी नियन,
11: लेकिन मजबूरी बाकी आदमी हिंदी आदत पड़ गई है, भोजपुरी बतिया पड़ रहा था हिंदी में आ जाने को।
12: हाँ, सामने वाला जब हिंदी बोली तब बोले के पड़ जाला। कल ड्यूटी में बनी की रूम पे?
11: ना जी, ड्यूटी में बनी है, हमने तो सोमवार का छुट्टी रहा।
12: आज कौन गाना सुने को बता दी?
11: आज काजल सानी का सुना दी।
12: अच्छा, काजल सानी के
11: और ये दाज गहरा मिलल बा प्यार के।
12: अच्छा,
11: ये आज सुना दी।
12: और सुनवाई के भी बात?
11: हाँ, वही रवि भैया भाभी लिखना सुनने वाले सारे को। रवि फोन किया था कि नहीं?
12: ना, अभी तो रवि फोन ना के ले रहे हैं।
11: कहाँ गए थे ना?
12: अच्छा, तो ये बात तो ना पता बा, कहीं गाँव आवे के बाद अभी बात ना भेल
11: बा। चलिए, फिर ढेर बात हो गई।
12: जी जी, चलिए ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल करने
1: के।

0: हॉस्पिटल जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल कमला राय कॉलेज रोड इंडियन गैस एजेंसी के बगल में गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने डॉक्टर कॉलोनी गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
8: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 8570-32042 पे।
9: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडो पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
10: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
9: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एमए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
11: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
12: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
11: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
12: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
11: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
12: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
11: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
12: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
11: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
12: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
11: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9797186164।
13: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
14: बात आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: नमस्कार सुनील जी।
16: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
15: धर्मेंद्र तिवारी बोल रहे हैं
16: जी। कैसे हैं धर्मेंद्र जी?
15: भैया
16: तो क्या हो रहा था अभी?
15: अभी तो घर तो पाए हैं, बारिश हो रही, घर में कुछ काम है वही कर रहे थे।
16: तो गाना कौन सा सुनना है आपको?
15: शादी वाला कोई गाना सुनवा दीजिए।
16: शादी

0: और सुनवाना भी है।
1: हाँ रेडियो रंजन श्रोता सुनना सारे आदमी।
0: ओके चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर मैं कॉल किया।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिम 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: जी कुमारी गोपालगंज से।
1: जी कैसे हैं खुशी जी?
0: अच्छे हैं, अपना बताइए।
1: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रहा था अभी?
0: अभी कुछ नहीं, बारिश हो रहा है, बैठे हैं।
1: तो गाना कौन सा सुनना है खुशी जी आपको?
0: गाना बहुत सटा है।
1: कौन सा गाना?
0: भोजपुरी गाना बहुत सटा है
1: जी। बिल्कुल बच सकता है भोजपुरी गाना। अच्छा, प्यार के बुखार उतारे लगी हो, ये वाला गाना ना?
0: हाँ यही।
1: अच्छा, और सुनाना भी है?
0: हाँ, कुमारी शिवम कुमार सलोनी कुमारी को और आपको जितने रेडियो सुने सब।
1: ओके, चलिए तो प्ले करे गाना आपकी।
0: हाँ कर दीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 9097160602।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
3: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
6: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
3: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, NEBOSH और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स
6: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
6: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।
7: Pick it up.
8: Hello.
7: Now pick your phone up.
9: बात आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: हाँ सर जी, हमारा संगठन होता का है।
11: जी जी, का होता है बताएं।
10: फोन था के कट गया है, नेटवर्क
11: ना जी, सबके संगे होता है, शायद बारिश के मौसम बनो, बारिश काफी तेज आवत है तो मैं नेटवर्क था फंसाता टे।
10: हम जाने की हमारे संगे होता कभी वो भरी
11: ना, ना आज काफी भयानक वाला बारिश होता, आज 2 घंटा हो गए अभी बारिश होता।
10: हम नहीं कहता अभी नीचे
11: ना, यहाँ तो होता बारिश खुला तो महीने जैसे अंदर पैर रखने फिर बारिश शुरू हो गए। राकेश बात करता नहीं ना।
10: हाँ जी, हाँ जी
11: जी,
10: तब बढ़िया बा। हमने कहा 29 तारीख के खूब भयंकर बारिश भइल है, नहीं पानी होई तरी
11: ओ दिन तेज जो भइ रहे, शाम के बारिश भइ रहे।
10: हाँ शाम के पूरा टेंट समझ आने अपना लोग के लगा रहे हैं, उधर आ गए
11: सब लेके चल गए।
10: हमने के पूरी खाई बैठल है यार, मतलब शाम के ही अभी मतलब 2-4 कमर पे खड़े ही खड़े तब तक पतल उतल न उठा
11: बोला कि ना खाए दे आज
10: का ना खाए के मिला दिन।
11: अब सब उदियाले गल तो कैसे आदमी खाए।
10: हाँ पूरा टेंट समझाना में पानी लग रहा है, एक फीट तक पानी लगे रहे तो मैं आदमी कहाँ बैठे कहाँ खाई है
11: ना खा पाई है। सही बात बा।
10: हाँ खाना में कुछ देख जो ड्रम सोलह है ओकरा में पानी जगता जगती जो ओकरा में पानी भर गए
11: वही बात बटे खाना भी बर्बाद हो गए। हाँ। तो बता दी गाना कौन सुने के बाद
10: तो सुने के चाहत पवन सिंह के सनहिया लगावल बहुत बात नहीं है
11: और सुनवाई के भी बा।
10: हाँ सुनावे का पूरा रेडियो काल फैमिली बा रहुआ बानी हम बानी अरे घर तो बोले जान संगे तनी छटक गई बड़न छटक गई बड़न जानते बनी उनका घरेलू मैटर बनी।
11: अच्छा अच्छा क्या वहाँ के श्रीमती जी ने की आवेदन का
10: श्रीमती जी कहा था कि 24 घंटा में 23 घंटा तू उनके संग रहा था हमारा संगे कहो रहो
11: ना तो 24 घंटा में 23 घंटा ना तो रखी।
10: हाँ तो अब बाबा जी बार बार हमारे कहीं चले जाए
11: तब तक लड़ाई होके बात बटे
10: वही से लड़ाई हो जाता है। बुधे के दिन समझे खदले बनी की तू हमारा संग भाई मत रहा
11: चली बढ़िया कैले बनी
10: बात बता की हमारा संग रहो हम अपन जहाँ बनी चाहे ठीक बनी हमारा से जब जरूरत पड़े तब हमारा से आके मिल लिया
11: जब काम पड़ी तब मिल लिया ठीक बा।
10: हाँ काम पड़ी तब मिल लिया के बिना मतलब की हमारा संग रहो भी ठीक नहीं है
11: बिल्कुल।
10: हाँ उनको मेरा भी कहना मिलेगा
11: चलिए ठीक बा। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल करने।
8: काहे आखिर काहे काहे रोवलू जब हंसावे के ना रहे काहे गुनगुनौलू जब गावे के ना रहे आज आंसू पोछतनी एगो प्रश्न बन के काहे कैलू मोहब्बत जब निभावे के ना रहे।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03 62042434-03।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
2: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।
4: बात, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो,
4: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 FM में।
10: नमस्कार मैडम।
4: नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
10: नाम मनोज कुमार
4: जी,
10: हम मुंगेर जिला से बोल रहे हैं।
4: कैसे हैं?
10: ठीक है।
4: तो क्या हो रहा था?
10: क्या हो रहा था, बगीचा में बैठे हैं, रखवाली करते हैं। अपने क्षेत्र का कुछ जानकारी हम आपसे साझा कर सकते हैं?
4: जी बिल्कुल कर सकते हैं।
10: देखिए, हमारे गाँव के बगल में एक घोड़ाखुर पहाड़ है, जिसका पौराणिक गाथा है कि जब दशरथ जी घोड़ा छोड़े थे तो वो घोड़ा जो था वही पहाड़ पे आके रुका था, तो उसका पदचिन्ह अभी तक यहाँ है।
4: अच्छा अच्छा,
10: उसी के नाम पे इस पहाड़ का नाम घोड़ाखुर रखा गया है। और वहाँ पर एक भोले बाबा का मंदिर है, वहाँ का मनोकामना सिद्ध होता है, जो भी कोई वहाँ जाके मांगते है ना, का मनोकामना सिद्ध होता है उस मंदिर में। बगल में झील है, बहुत सुंदर झील, बहुत अच्छा देखने में लगता है। 1 जनवरी को लोग वहाँ पिकनिक करने भी जाते हैं।
4: ये बढ़िया जानकारी दी है, कभी घूमना हुआ तो फिर आदमी आ सकता है उधर।
10: हाँ आइए, बहुत अच्छा घूमने का जगह है यहाँ पर। पानी इतना अच्छा गिरता है ना ऊपर से झरना, कहते हैं कि अगर किसी को खुजली उजली हो गया है कुंड में नहा लीजिए तो ठीक हो जाएगा।
11: अच्छा,
10: हमारे पहाड़ का यही विशेषता है मैडम।
11: चलिए
10: गाना हमको सुना दीजिए आज।
11: जी
10: दोस्ती का, गुड़िया कब तक रूठी रहोगी।
11: सुनवाना भी है?
10: सुनवाना है आपको, सरिता देवी को और सिंधिन के सारे श्रोतागण को। ठीक है प्रणाम मैडम, गाना सुना दीजिए।
11: जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल किया।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18744।
5: Now pick it up, pick it up.
6: Hello.
5: Now pick your phone up.
6: Hello.
5: Pick it up, pick it up.
6: Hello.
5: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम 90.4 FM में।
1: थैंक यू
2: जी। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: जी रियाज अंसारी सिवान।
2: जी जी, क्या हाल चाल है?
1: हाल चाल बढ़िया है, यहाँ तो कंपटीशन हो रहा है कॉल लगाने के लिए।
2: चलिए तो कंपटीशन में आप जीत गए लग रहा है।
1: हाँ, मैं फोन किया।
2: चलिए बढ़िया है, तो बता दीजिए।
1: पहली बार भी किया था तो 75, अभी 76।
2: चलिए बढ़िया है, लग गया ना?
1: हाँ लग गया जी, लग गया। लड़ाई पे जा रहे हैं, मार करेंगे, मार करेंगे।
2: चलिए तो आपको उधर भी बारिश हो रही है?
1: नहीं, हमारे और इधर हम बेंगलोर में है ना, अभी फर्स्ट टाइम फोन किया था आपको, सेकंड टाइम है। तो इधर तो दिन में धूप होता है पर माशाल्लाह रात को बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। अब बारिश भी रात को ही होती है, दिन में कमाओ रात को सो जाओ।
2: बढ़िया है, रात को बारिश होती है तो कोई टेंशन नहीं रहता, अपने घर में सब कुछ रहता है।
1: उधर तो गाँव में तो पूरा आंधी तूफान, क्या क्या किसी का सामने आना, टेंट सब उड़ जाए।
2: आज तो बहुत सारा इधर लगन है और देख रहे हैं कि सुबह 10 बजे से बारिश इतनी कंटिन्यू हो रही है।
1: हम भी मिस कर रहे हैं यार बहुत अपने गांव की।
2: चलिए तो गाना कौन सा सुनना है?
1: गाना हमें सुनना है वो मेरे आने पे खिल जाना तेरा, और मेरे जाने पे रुक जाना तेरा, याद है ना
2: जी। और डेडिकेट भी करिएगा।
1: हाँ करेंगे, आकाश सैनुल्ला मकान और शहजादी।
2: चलिए तो प्ले करे गाना आपकी।
1: और एक बात मैम, कुछ बोल सकते हैं शहरी वगैरह? क्योंकि
2: बिल्कुल कुछ भी बोल सकते हैं जिससे सुन के किसी को आपत्ति नहीं हो, किसी को
1: नहीं, नहीं, नहीं,
2: नहीं, मतलब मैं आपको बोल रही हूँ किसी को दुख ना हो, बाकी आप सब कुछ बोल सकते हैं। और गाने में भी कोई ये नहीं है, गाना बस जातिवाद नहीं होना चाहिए, धार्मिक गाना नहीं होना चाहिए, बस
1: वो सबसे दूर रहते हम लड़ाई झगड़ा से, क्या मतलब। तो हम यही कहना चाहते कि हमारे हेड सॉन्ग के साथ में ए भी बज जाए, मांगा था खुशी आशियाने की चल पड़ी आधिया जमाने की, मांगा था खुशी आशियाने की चल पड़ी आधिया जमाने की, मेरा दर्द कोई समझ ना सका क्योंकि हम याद रहते हैं हमेशा मुस्कुराने।
2: जी जी,
1: बस इतना ही, थैंक यू।
2: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लंबाई चॉइस में कॉल किया।
1: थैंक यू मैम,
2: वेलकम।

0: दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माय चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाज़त और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: रामू हरिया, कल तैयार रही लो पराली जलाए चले के बा।
4: ठीक बा भैया।
5: ए भैया, एगो सूचना सुनला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दियल जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
6: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
5: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियत जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
6: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावो तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
5: एकर बढ़िया विकल्प ये है बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
6: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
5: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 9857788291 या 9520384088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: या आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
1: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
2: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे। तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
8: कितना खूबसूरत है।
9: वाकई कितना खूबसूरत है।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
5: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
5: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
5: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क 99-393-65-93।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए चले के बा।
5: ठीक बा भैया।
6: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
4: ऐसा का है, जरावला से काहे मना होता।
6: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
4: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
6: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
4: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराए जाना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा करी भाई जानकारी देके।
6: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
7: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
8: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
7: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
8: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, NEBOS और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
7: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
8: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
7: पता, छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
7: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
8: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
8: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 90971602।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
4: भारत के 24 राज्यों में 160 से अधिक शहरों में 280 से ज्यादा स्कूल्स के साथ एजुकेशन में एक ट्रस्टेड नेम बिरला।
3: अब वही लेगेसी, वही एक्सेलेंस आ गया है आपके शहर गोपालगंज में।
4: इंट्रोड्यूसिंग बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल, एडमिशन्स आर नाउ ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 7।
3: और खास बात, प्ले ग्रुप के लिए लिमिटेड पीरियड फ्री एडमिशन।
4: मॉडर्न एजुकेशन विथ AC क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, लाइब्रेरी एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी।
3: बिकॉज लर्निंग इज बियॉन्ड क्लासरूम्स, म्यूजिक, डांस, योगा एंड जूडो क्लासेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑल टीचर्स आर BEd qualified and follow CBSE guidelines, ensuring quality education.
4: Visit today, Yadopur Road, Saraya Ward No. 1, Shambhu Path, Saraswati Talkies ke paas, Gopalganj.
3: Call now 775-994-9440 or 775-994-9441.

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाक चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा? आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाई।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
2: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: ठक ठक।
3: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: राधा तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: आओ एक भीगी हुई सी कहानी सुनाता। जब आसमान से बूंदे नहीं मोहब्बत बरसी थी, बरसात ने ऐसी धुन छेड़ी जिसके लिए जिंदगी सदियों बरसी थी।
8: अरे सुन सुन।
9: यस मां।
8: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।
9: मां मैं बाद में देख लूंगा, बहुत लेट हो रहा हूँ।
8: अरे सुन सुन, एक बार देख तो ले।

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
6: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, AC हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
4: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। CBSE पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक, सेशन 2026-27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
6: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
4: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और CCTV कैमरा की सुविधा,
6: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता, हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 800-222-1969 या 9117018350।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रिजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेजों में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हो सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्ते, निदेशक CBSE पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जिसमें आप अपने वार्ड का एडमिशन दिलाना चाहते हैं। वहाँ क्लासरूम में बच्चों के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बॉडी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। साथ साथ आप 10th और 12th के CBSE का रिजल्ट भी देखने का मौका मिलता है। यदि अबव 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस एवं रिजल्ट संतोषजनक है तो आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा जी। धन्यवाद।
2: Last 10th board result 2025. Outstanding performance. 50 students scored above 90% and no students scored below 80%. Truly शानदार achievement.
3: लगातार 3 वर्षों 2023, 2024 और 2025 में district topper in commerce stream देने का गौरव।
2: Visit करे CBSE Public School, बस्तीला खास गोपालगंज या contact करे 763397010 4। भारत के 24 राज्यों में 160 से अधिक शहरों में 280 से ज्यादा स्कूल्स के साथ एजुकेशन में एक ट्रस्टेड नेम बिरला।
3: अब वही लेगेसी, वही एक्सेलेंस आ गया है आपके शहर गोपालगंज में।
2: इंट्रोड्यूसिंग बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशंस आर नाउ ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 7।
3: और खास बात, प्ले ग्रुप के लिए लिमिटेड पीरियड फ्री एडमिशन।
2: मॉडर्न एजुकेशन विथ AC क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, लाइब्रेरी एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी।
3: बिकॉज लर्निंग इज बियॉन्ड क्लासरूम्स, म्यूजिक, डांस, योगा एंड जूडो क्लासेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑल टीचर्स आर BEd qualified and follow CBSE guidelines, ensuring quality education.
2: Visit today, Yadopur Road, Sareya Ward No. 1, Shambhu Path, Saraswati Talkies ke paas Gopalganj.
3: Call now 775-994-9440 or 775-994-9441.
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710-3092 या 9765-65750।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: ठक ठक
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
10: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
12: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
13: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
14: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
11: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
15: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
16: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
15: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
17: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
18: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
17: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
18: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
5: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
19: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
19: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
5: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
19: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
5: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
19: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
20: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
21: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
19: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
22: प्रसाद क्लिनिक,
23: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
22: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंड स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
23: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
24: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
25: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक
0: बैंक गोपालगंज या कॉल करें 8604348652 पे।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
5: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
19: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
5: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
19: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
19: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
8: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
25: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
26: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
25: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211-87952। नियम और शर्तें लागू।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
19: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
19: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 9797-14-86164।
27: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
28: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
27: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
28: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
27: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
29: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
30: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
29: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
30: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
29: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
30: जानकारी है तो कॉल करें 6052-62112 पे।
5: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज।
19: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
5: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
19: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें
4: तराश आ जाता है।
5: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
4: सेंट जॉन स्कूल, सासामुसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
6: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए चले के बा।
9: ठीक बा भैया।
10: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
6: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
10: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
6: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
10: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसा पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
6: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
10: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना, खेती के गहना, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपनी रेडियो रिम दोस्त आरजे सोनी आप सभी के बीच हाजिर हो चुके हूँ आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस के साथ। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप कॉल इंस्टाग्राम, आप जिस माध्यम से चाहे शो में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है हमारा 98527881 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। उसके अलावा आप रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं या फिर कॉल करिए 72776665 पे और जुड़ जाइए अपने सो योर वॉइस योर चॉइस से। तो चलिए फटाफट से अपना फ़ोन उठाइए, जुड़ना शुरू करिए। तब तक एंजॉय करते हैं आप गाने को सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। और आप सब बताइए कि आवाज़ मेरी आप सभी के पास पहुँच रही है कि नहीं, ऐप कैसा चल रहा है ज़रूर बताइए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और यहाँ 12:23 हो रही है स्टूडियो घिड़ी में। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं हमारे पास। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि नमस्कार मैडम जी, प्रणाम, गुड आफ्टरनून, जय माता दी, सबको बोल दीजिएगा। बिल्कुल बोल दिए हैं, शिवसागर दीवाना है जम्मू एंड कश्मीर से और गाना सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। और गाना है और जो आपकी गाने की फरमाइश है, गाने का नाम एक बार अलग से लिख के भेज दीजिए कि कौन सी गाने सुनना है। आपकी गाने की फरमाइश जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ आगे बढ़ेंगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो मैम, महमूद जी जुड़ चुके हैं केरला से और लिख रहे हैं कि मेरा भी हाजिर लगा दीजिए। बिल्कुल आपकी हाजिर लग चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ उजैर आलम जुड़ चुके हैं मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। लिख रहे हैं कि गाना सुनना चाहते हैं, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, और क्वेस्ट से दीनानाथ यादव जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो जी, और मैसेज करने वाली है, नाम है इनका सिमरन। ओहो, बहुत बहुत स्वागत है सिमरन जी, बहुत और शो से जुड़ी और नाम ज़रूर अपना साथ में मेंशन किया करिए। आप जब भी शो में जुड़ रही हैं आप अपना नाम मेंशन नहीं कर रही हैं और बैक में जाके मैसेज देखने हैं। और इतनी सारी रील जो शेयर कर रही हैं, आप रील शेयर नहीं करिए, जो भी मैसेज है शेयर करिए। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि ज़िंदगी की राहों में थोड़ा संभल कर चलना, ज़िंदगी की राहों में थोड़ा संभल कर चलना, यहाँ लोग से दिल नहीं ज़रूरत से प्यार करते हैं। और मुस्कुराते रहो चाहे गम भी कितने भी हो, ज़िंदगी हर दर्द के बाद जीना सिखा देती है, वक्त और हालात इंसान को बदल देते हैं, अब तो अपने भी बातों से दिल दुखा देते हैं। ज़िंदगी एक किताब की तरह होती है, हर एक पन्ना कुछ नया सिखाता है। और इस मैसेज के साथ रैन से जुड़ी हुई है जादवपुर से, फिलहाल हैदराबाद से सुन रही रेडियो रिमझिम को, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेश गौतम जी हैं मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत है। लिख रहे हैं कि मुस्कान मूवी से सॉन्ग सुनना है, कभी हंसते गाते, और डेडिकेट है आपको और सभी दोस्तों को। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है। बने रही हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि आवाज़ आ रहा है मैडम जी, और अब भी सही चल रहा है। और आगे लिखते हैं कि चाहे कितना भी ऊँचा पद प्राप्त कर लो, चाहे कितना भी ऊँचा पद प्राप्त कर लो, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्रियाँ हासिल कर लो, अगर बोलने की तमीज और इंसानियत नहीं सीखी तो वो इंसान अनपढ़ के बराबर है। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप कुमार ठाकुर मिर्जापुर वाले पंजाब से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ एक और मैसेज है, उमाशंकर मिश्रा जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। दिनेश मिश्रा हैं दिल्ली से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून, हम भी जुड़ गए हैं श्याम बहादुर देहरादून से, और लिख रहे हैं कि मौसम ख़राब है वहाँ, वहाँ का मौसम कैसा है बताइए। तो हमारे यहाँ मौसम आज बढ़िया हुआ है और बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ एक और वॉइस पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, और राजकिशोर यादव जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हमको भी गाना सुनना है, बिल्कुल गाना सुनाएंगे। जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं और नाम है आबिद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है तो अपना गाने की फरमाइश भेज दीजिए कि आपको कौन सा गाना सुनना है, हम आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ेंगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि गाना का बोला है, ना तेरा कोई दोस्त ना मेरा कोई दोस्त, और यही गाना सुनना चाहते हैं। मैम सुनील कुशवाहा है मैयर एमपी से, बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है। बने रही हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, तो अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है आज की, वो फरमाइश है उजैर आलम मुंबई से जुड़े हुए हैं और इनको सुनना है गाना, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर रहे हैं,
आवाज पहुंच रही है, अपने गाने को एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: वज़ीर आलम जी की तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं कि थैंक यू वज़ीर आलम वेस्ट मुंबई से गाना बजाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी शो में जुड़े।
1: इक्कीस वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
2: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
1: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
2: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराश आ जाता है।
1: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
2: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
3: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए जले के बा।
4: ठीक बा भैया।
5: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
3: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
5: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
3: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
5: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली, ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
3: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी देके।
5: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज लिख रहे हैं कि हेलो हाय गुड आफ्टरनून सुनील जी। और लाल सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़ गए और लिख रहे हैं कि मेरे लफ्ज़ फीके पड़ गए, मेरी लफ्ज़ फीके पड़ गए तेरी आदत के सामने, मैं तुझसे खुद कर रहा हूँ अपनी खुदा के सामने। और इस मैसेज के साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से लाल सिंह जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं अनिल कुमार जी बनारस जिले से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि अच्छाई जानकर पसंद करना आकर्षण है, मगर कमियां जानते हुए भी पसंद करना प्रेम है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, नाम मेंशन नहीं है, और लिख रहे हैं कि अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए क्या करें। हेलो मैम, और प्रोफाइल पे नाम दिखा रहा है वीरेंद्र वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अपनी पसंद का गाना सुनना है तो अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करिए, अपना नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ जुड़ जाइए शो से, या फिर गाने का नाम या लिंक कुछ भी हो शेयर करिए और साथ में अपना नाम पता ज़रूर मेंशन करिए। और यहाँ सिमरन जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं मैम अल्ताफ राजा का गाना फूल बजाने की कोशिश करना, तो अल्ताफ राजा का जो गाना है वो फूल कैसे बजाए, क्योंकि अकेले एक ही गाना 15 मिनट का है तो नहीं बजा सकता। और मैसेज करने वाले हैं दिनेश मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर से शिव सागर दीवाना जी की तरफ से, और इनको सुनना है गाना शिल्पी राज की आवाज़ में काला साड़ी में। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुँच रही है, अपने गाने को एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: कब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं और लिख रहे हैं कि सोनी मैडम जी गुड आफ्टरनून, मैं मनीष रजाक फाजिलनगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से और हमें भी गाना सुनना है, सुना दीजिए। बिल्कुल फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज है, प्लीज़ सुना दो मैम। बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, आपकी फरमाइश जब पहुँची है तो अपनी बारी आने का इंतज़ार करिए। और वीरेंद्र वर्मा जी है फ्रॉम मेरुट से, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और गाना सुनना है, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, प्लीज़ सुनवा दो। तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में और आपकी बारी आने पर हम आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन है, कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: थैंक यू, कैसे हैं?
0: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ
0: जी। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: मैं नीता सुकुमार
0: से। जी, तो कौन सा गाना सुनना है नीसा जी आपको आज?
1: ये गाना है ना तेरी मेरी मेरी तेरी, नी वाला।
0: नी वाला?
1: हाँ।
0: एक तो रानू मंडल का है ना?
1: हाँ,
0: वही वाला
1: जी।
0: और सुनाना भी है
1: आपको? आज इतने दिन सुना
0: है। ओके, तो प्ले करें
1: जी। थैंक यू।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल के।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

90.4 रेडियो रिमिशन सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। 12:51 हो गई है स्टूडियो घड़ी में, और अगर आप भी शो से जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, कॉल, इंस्टाग्राम, और यहाँ बढ़ेंगे आगे व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। और यहाँ मैसेज है, और रंजीत चौधरी जुड़े हुए दुबई से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और गाने की फरमाइश है प्यार हुई ना दोबारा, नीलकमल की आवाज में सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है जो प्ले करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शो में जुड़े बने रहिए, साथ में सुनते रहिए रेडियो रंजीत को। व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो व्हाट्सएप मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं, राकेश कुमार जुड़े हुए हैं लेह लद्दाख से, और लिख रहे हैं मेरा भी हाजिर लगा दीजिए, बिल्कुल लग चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज है, नाम मेंशन नहीं है, और टाटा जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं आबिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फरमाइश से तो दो लिंक आपने शेयर किया है, कौन सा गाना सुनना है एक लिंक को कन्फर्म करिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हमारा भी हाजिर लगा दीजिए, बिल्कुल लग चुकी है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, और अमन प्रजापति हैं थावे से, बहुत बहुत स्वागत है। मुस्तफ़ा जुड़ चुके हैं सऊदी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की कोशिश है, और यहाँ अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है मुस्कान फिल्म से, कभी हंसते गाते, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं। और अगली फरमाइश है राजेश गौतम जी की मुंबई से, तो इन्जॉय करिए अपने फरमाइश को सिर्फ और सिर्फ रेडियो।

0: आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
4: कहाँ पर?
3: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, चवही खास, गोपालगंज,
4: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
3: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
4: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835556965।

90.4 रेडियो रिमझिम पे आप सभी बने हुए हैं और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए, लिख रहे हैं कि हर पल में खुशी अगर एहसास करो, हर पल में खुशी अगर एहसास करो और ज़िंदगी उत्साह की तरह है, अगर आभास करो, अच्छा ज़िंदगी उत्साह की तरह है अगर आभास करो। और लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सोनी जी, मैं भी जुड़ गया हूँ शो से और आप बताइए कैसी है। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और मैसेज करने वाले अनिल जी छोटपुर से बहुत बहुत स्वागत है, आप बताइए आप कैसे हैं। और यहाँ बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो मैम राधे राधे, मैं पाजी ओपी से और मेरा भी आज लगा दीजिए और वेट मत बोलिएगा कभी किसी को। ओहो ऐसा क्यों कि वेट नहीं बोलेंगे कभी किसी को। और बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है, तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है प्ले कर रहे हैं और आबे जी जुड़े हुए हैं, इनकी तरफ से गाने की फरमाइश है। तो चलिए अगली फरमाइश लेते हैं आबे जी की फरमाइश पे, कि कौन से गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से। और इनकी तरफ से फरमाइश है, इस करोगे तो दर्द मिलेगा। तो काफ़ी बढ़िया गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं, तो चलिए हम सभी इंजॉय करते हैं आबे जी की फरमाइश पे, ये उनके पसंद का गाना।

0: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
1: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक। सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
0: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
1: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और सीसीटीवी कैमरा की सुविधा,
0: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता: हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 800-222-1969 या 911-701-8350। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम पे बनी हुई है आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ शिव सागर दीवाना जी हैं, जम्मू एंड कश्मीर से लिख रहे हैं कि अभी बढ़िया चल रहा है और गाना भी दोनों ही अच्छा चल रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है और कौन है कहाँ से। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना और कहाँ से।
1: मोहम्मद कोफ मोगल विलेज से।
0: जी कैसे हैं।
1: बढ़िया है, अपना बताइए।
0: हम भी बढ़िया हैं। क्या हो रहा था।
1: अभी तो आया दोपहर में, तो देखे तो चल रहा था शो, तो कॉल लगा रहे थे।
0: तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको।
1: गाना हमको सुनना है हिंदी सॉन्ग हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने।
0: अच्छा
1: जी,
0: और डेडिकेट भी करिएगा
1: जी। प्रमुख जी जुड़े हैं कि नहीं ये लोग।
0: नहीं अभी तो प्रमुख जी नहीं आए हुए हैं शो में।
1: और ये राजेश गौतम अनिल जी,
0: ये लोग आए हैं राजेश गौतम अनिल जी।
1: हाँ तो इन लोगों को रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी श्रोताओं को।
0: चलिए तो प्ले करे गाना आपकी।
1: जी
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया। एंजॉय करिए अपने गाने को।

0: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
1: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
0: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
1: यहाँ उपलब्ध है एक साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
0: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
0: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
8: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।
9: वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज है, लिख रहे हैं कि इतना प्यारा गाना सुनवाने वाले भाई को धन्यवाद देते हैं। राजेश गौतम जी हैं मुंबई से। और यहाँ बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि भैया को धन्यवाद गाना डेडिकेट करने के लिए। एक्चुअली सही बात है, नाइस सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं अनिल जी छोटपुर से। और जी हाँ, और यहाँ इरशाद मास्टर जुड़ चुके हैं धनाव से, बहुत बहुत स्वागत है। बीमल कुमारी आ चुकी हैं थावे से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि काश कहीं खुशियों की दुकान होती, काश कहीं खुशियों की दुकान होती, उस दुकान में मेरी जान की पहचान होती, मैं खरीद लेती सारी खुशियाँ मैम आपके लिए, चाहे उसकी कमी मेरी जान, उसकी कीमत मेरी जान क्यों ना होती। मैम अब तो आप अपना एक फ़ोटो भेज दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं पाजी यूपी से, तो आपको मेरा फ़ोटो क्यों चाहिए? अगर आप को मेरा आवाज़ पसंद लगता है तो आप मुझे मेरी आवाज़ से ही पहचानिए। और कुछ चीज़ें बिना देखे ही पसंद करना ज़्यादा अच्छा बात होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है व्हाट्सएप के माध्यम से। और यहाँ सिमरन जी हैं, कॉल कर रही हैं, तो आप कॉल नहीं करिए, शो से जुड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर गाना सुनना है तो गाने का नाम या लिंक भेज दीजिए, या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, लेकिन कॉल नहीं करिए, व्हाट्सएप कॉल। अगर कॉल करना है तो उसके लिए नंबर है 7277-1665-96 पे कॉल करिए और जुड़ जाइए अपने शो योर वॉइस योर चॉइस से। और यहाँ इंजॉय करते हैं मुस्तफ़ा जी की फरमाइश पे, इनकी पसंद के गाने को। और गाना सुनना है नासा छोड़ो बाकी ना, तो इंजॉय करते हैं इस गाने को सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: ठक ठक
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री कमल श्री कमल श्री बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैम जरा पाजी का ढंग से समझा दीजिए ना। और मैसेज करने वाले हैं धनेश मिश्रा जी दिल्ली से। कोई बात नहीं, वो समझ गए हैं, और सबको अंदर ये उत्सुकता होगी जानने की कि आखिर हम हैं कौन या फिर कैसे दिखते हैं, होता है, खैर कोई दिक्कत नहीं उसमें। और उनका मैसेज था, उनके तरफ से भी ये जानने की उत्सुकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, उनकी जो मर्जी थी बोले। और यहाँ सन्यासी रंजन बाबा जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं सोनी जी नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं, हमारा भी हाजिरी लगा दीजिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हाजिरी लग चुकी है। और यहाँ बजाजी रोड लालगंज से एमडी नौशाद, एमडी सदाब, और साथ में एमडी निसार, एमडी रिजवान और अभिनंदन टेलर के सभी वर्कर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शो में बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को, और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है, मनीष रजाक जी हैं फाजिलनगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। और गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से, खेसारी लाल की आवाज़ में तू लंदन के लड़की, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुँच रही है, अपने गाने को एंजॉय करिए सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम पे।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
2: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395-651 या 97097-06-575।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ मैसेज है मनीष रजाक जी की तरफ से, लिख रहे हैं कि गाना बजाने के लिए दिल से धन्यवाद है मैडम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है। लिख रहे हैं कि रोते हुए तुझे याद करके, कि रोते हुए तुझे याद करके खुश है तू मुझसे बात ना करके। अब मैं ये चाहता हूँ कि तेरे होठों पे ये हंसी कभी ना जाए, खुदा करे तू मेरे मौत पे भी मुस्कुराए। क्या बात है। और

हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ बढ़ेंगे आगे, लिख रहे हैं कि मैम मैं फिर से आ गया हूँ और दिलीप कुमार ठाकुर हैं मिर्जापुर टुमाली पंजाब से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है गाने की फरमाइश से, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे। और गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं बीरेंद्र वर्मा जी फ्रॉम मेरठ से। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुँच रही है, अपने गाने को इंजॉय करिए सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम पे।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003।

रेडियो रिमझिम 90.4 सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। अगर आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है हमारा 98 527 88 291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करिए, हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ, या फिर रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पे जाइए, डायरेक्ट मैसेज करिए, अपने गाने की फरमाइश को सुनिए और जुड़ जाइए अपने शो योर वॉइस योर चॉइस से। उसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं हमें 72 77 16 65 96 पे। और यहाँ इंस्टाग्राम की तरफ बढ़ेंगे तो रंजीत चौधरी यहाँ लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है, बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है नीलकमल की आवाज़ में, प्यार हो ही ना दोबारा। और एक यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है और मैसेज है लिख रहे हैं कि मेरा नंबर है विकास चौधरी हैं, ये भी दुबई से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और सॉन्ग सुनना है सरसों के सगिया, तो खेसारी लाल के आवाज़ में गाना है, आपकी गाने की फरमाइश है जो प्ले करने की पूरी कोशिश है। बने रहिए साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है रंजीत चौधरी, जुड़े हुए हैं दुबई से और इनको सुनना है गाना प्यार हो ही ना दोबारा नीलकमल की आवाज़ में। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुँच रही है, अपने गाने को इन्जॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। और कॉल वाले लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग कॉल कर रहे हैं तो गाना ख़त्म होने के बाद कॉल करिए, या फिर ऐड ख़त्म होने के बाद बीच में कॉल करिएगा गाना चलते टाइम, तो फिर आपकी जो फरमाइश है वो नहीं प्ले हो सकता है और आप लोग भी परेशान होइएगा और गाना भी नहीं सुन पाइएगा। तो फिलहाल इंजॉय करते हैं रंजीत चौधरी जी की फरमाइश पर नीलकमल की आवाज़ में ये सैड सॉन्ग।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434468 पे।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ इंस्टाग्राम मैसेज की बात करें तो यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है, दीनदयाल कुमार जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, सुना दीजिए। तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ भी मैसेज है, लिख रहे हैं कि क्या सोनी मैम हमारा गाना ना बाजी, बिल्कुल बाजी। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप कुमार ठाकुर मिर्जापुटू मोहाली पंजाब से, और अभी बारी है कॉल का, तो मैं अभी कॉल से फरमाइश प्ले करूँगी, उसके बाद आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। एक और यहाँ मैसेज है, तो आपके भी गाने के फरमाइश जो है प्ले करेंगे, बने रहिए साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और जब जिसकी बारी आएगी हम उस हिसाब से गाने प्ले करेंगे। अगर मैसेज है फरमाइश की है तो थोड़ा सब्र रखिए, इंतज़ार करिए। और यहाँ अगली फरमाइश ले रहे हैं कॉल के माध्यम से, कॉल पहुँचा हुआ है तो बात करते हैं, सुनते हैं कौन है और कहाँ से। हेलो,
1: हेलो,
0: आपके बगल में रेडियो चल रही है, पहले उसे बंद कर दीजिए।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: जी आवाज तो पहचाना था, लेकिन नंबर ही हमारे पर्सनल घर के ऊपर फरमाइश वगैरह हमारे कॉल से ना बात हुई।
0: जी जी काहे ना हुई, बिल्कुल हुई।
1: साथ मास्टर बोलते हैं घर के नंबर है पर्सनल उनका।
0: अच्छा
1: जी, अब हमारे कल गाना सुन ले भाई, जहाँ पे कह दिए हमारे मोबाइल पे कॉल करो, हम निकला सर मिला।
0: अच्छा तो जेकरा सुने के बाद वो तो कॉल कर सका था ना। बात करे ना क्या
1: बात करे ना, अभी ना आई लोग के।
0: अच्छा बात करी लो तब ना आई।
1: हाँ वही तो हम कहे ना कि बात करे के बाद हम लोग क्या एक से बात करेंगे जे। तो दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके गाना उनका फरमाइश हो लोग के अनुवादी जी के,
0: और अनवरी जी के फरमाइश है।
1: जी जी
0: चलिए तो गाना प्ले कर दे ले बनी।
1: जी और सुनवाइए सब जितने रेडियो जो सुनने वाला का सब कुछ सुनवाए के बन का, और शायद मास्टर को सुनाइए।
0: जी जी अगला बेरी अगर गाना के फरमाइश हुई तो बोले मुहा के कॉल करे के, ठीक बा?
1: हाँ,
0: ना हम फरमाइश ना प्ले करे
1: मैं ना बात कराएगा अगला बार।
0: जी जी चलिए ठीक बात, तो प्ले कर दे ले बनी गाना।
1: जी जी
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, सो मैं कॉल करनी, एंजॉय करी गाना के।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए जले के बा।
4: ठीक बा भैया।
5: ए भैया एगो सूचना सुन ला हा, कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दियल जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
6: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
5: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियत जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
6: अरे हमरा तो जानकारी ना रहल कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावो तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
5: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
6: अच्छा तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
5: याद रखी ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ मैसेज है इरशाद मास्टर जी की तरफ से, लिख रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी अनवरी जी का गाना सुनाने के लिए और इरशाद मास्टर की तरफ से धन्यवाद है। और बढ़ेंगे आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम सोनी मैम जी, इरशाद मास्टर का गाना वेरी गुड, थैंक यू, धन्यवाद फरमाइश करने का। और मैसेज करने वाले हैं जहूर आलम अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और यहाँ भी हम मना किए थे कॉल करने के लिए, व्हाट्सएप कॉल के लिए, और यहाँ बार बार कॉल आ रहा है, तो अगर ऐसा करिएगा तो फिर हम ब्लॉक कर देंगे। ये आखिरी बार बोल रहे हैं सिमरन जी आपको, अगर बार बार अगर आपका व्हाट्सएप पे कॉल आ रहा है तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे। फिर मत कहिएगा कि आप ब्लॉक किए हैं, फिर आपको जहां शिकायत करना होगा आप कर सकती हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैम हम भी इंतजार कर रहे हैं, हमारा भी गाना बजा दीजिए। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे। और मैसेज करने वाले हैं सुनील कुशवाहा मैयर एमपी से, तो अगली फरमाइश आपकी रहेगी। और यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है दिलीप कुमार ठाकुर है मिर्जापुर टुमाली पंजाब से, और इनको सुनना है गाना, तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं। आवाज़ पहुँचिए, अपने गाने को एंजॉय करिए, हर्षन तेरी रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

हर जगह भाभी ननद के बीच वही बात हो जाया करती है, जबकि हर लड़की वो कभी भाभी बनती है तो वो ननद बनती है, फिर भी क्या स्थिति है वो देखने लायक है।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
3: कहाँ पर?
2: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, चवही खास, गोपालगंज,
3: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
2: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
3: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835556965।

रेडियो टिमटिम 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि विकास चौधरी है जुड़े हुए हैं, तो वही से लिख रहे हैं मेरा गाना कब बजेगा। बिल्कुल आपके गाने की भी फरमाइश प्ले करेंगे, थोड़ा और इंतजार करिए, बने रहिए साथ में, सुनते रहिए रेडियो टिमटिम को। और यहाँ अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे मैहर एमपी से सुनील कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं, और इनको सुनना है गाना ना तेरा कोई दोस्त ना मेरा कोई दोस्त, उदित नारायण की आवाज़ में ये गाना। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुँच रही है, अपने गाने को इंजॉय करिए सिर्फ और सिर्फ रेडियो टिमटिम 90.4 एफएम पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में।
3: क्यों, क्या हुआ है?
2: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
3: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
2: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
4: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ मैसेज है धर्मेंद्र तिवारी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। एक और यहाँ मैसेज है दिनेश दीनदयाल कुमार जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना सुना दीजिए। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे मलेरिया हमारे साथ और सोनू निगम की आवाज़ में गाना सुनना चाहते हैं, तो आपके गाने की फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है कॉल के माध्यम से। तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन से गाने की फरमाइश है और कौन है कहाँ से। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, का हाल चाल बारा मजी?
1: ठीक हाल चाल था, तो बता दे हमारा नाम, हमने बता रहा जोता पड़ी।
0: जी जी
1: आज दिन ठीक हो ना कालू ये किना कॉल कर लगा बाद बरखा है लाडू देखा नहीं कि बरखा आई क्या था नहीं क्या
0: देखी का होला अब वो तो मौसम लागत है कि बरखा होके वाला भइल बा
1: कल गाना के बरखा गाना ढेर लोग सुनाल। तो आज हमारा सुना दी गाना है, ढेर दिन भाई सुन ले। काहे तुर बसुरिया बजौलो हमके बिसरौलो,
0: काहे फिर बसुरिया बजौलो हमके बिसरौलो।
1: हाँ,
0: अरे सुनवाए के भी बा
1: सब कुछ सुनी। हम तो बाजार से आनिया तो कहीं टाइम ढेर हो गए बा, तो कहीं रहा कॉल लगा देने लागता कि ना तो लागिए गेला।
0: चलिए ठीक बात, तो गाना प्ले करता नहीं।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल करी।

0: और इसी गाने के बाद हम बढ़ेंगे दोपहर समाचार के बाद। तो आप सब कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। आप सभी से मिलते हैं इस दोपहर समाचार के बाद, और जिनकी भी फरमाइश से बच गई है वो लोग फिर से एक बार मैसेज करेंगे कि मेरी फरमाइश से बाकी है, और फिर से आप सभी जुड़ सकते हैं शो में। और आप सभी से मिलते हैं दोपहर समाचार के बाद बाकी की फरमाइशों के साथ।
1: ये गाना मेरा मोस्ट मोस्ट फेवरेट गाना है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो हैं चित्रगुप्त जी। आई एम श्योर कि इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, खासकर जो लोग भोजपुरी फॉलो करते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि चित्रगुप्त श्रीवास्तव कौन थे और वो कितने महान थे। लेकिन बहुत सारे लोग जो हमारे जनरेशन के हैं, जिनके लिए आई एम डूइंग दिस ताकि वो लोग ये जान सकें कि हमारी जो कहानी है हमारी भोजपुरी की वो कितनी रिच है। चित्रगुप्त जी का जन्म हुआ था 1917 में बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में, एंड अपने टाइम के आई थिंक वो सबसे पढ़े लिखे म्यूजिक डायरेक्टर थे। ही वॉज अ डबल एम ए और पटना कॉलेज में वो प्रोफेसर थे, और उन्हें म्यूज़िक से इतना लगाव था कि एक दिन ही डिसाइडेड कि वो अपना प्रोफेसर का काम छोड़कर मुंबई जाएंगे, और अगर वहाँ पे गाने वाने कर पाए तो करेंगे, नहीं हो पाया तो वापस आ जाएंगे। एंड थैंक गॉड दैट ही टुक दैट डिसीजन, वो मुंबई गए। वो आज चित्रगुप्त जी की

0: मेट रूममेट ये हमको बहुत दिन बाद पता चला जब हम भोजपुरी म्यूजिक पे फिल्म म्यूजिक पे रिसर्च करना शुरू किए तो माँ ने बताया कि तुम्हारे नाना जी चित्रकूट के रूम
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीतिक आह्वान। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमरीका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान। पश्चिम बंगाल तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नवाचार आधारित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान तंत्र को बदलने की आवश्यकता पर जोर। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: मध्य पूर्व के देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। उधर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है तथा पहले से ही नाजुक युद्ध विराम और कमजोर हो गया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पहल प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा के बाद मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। इस पहल का उद्देश्य फंसे टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए गुजरने में मदद करना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन सांस्कृतिक आदान प्रदान खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में सम्पन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा की ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सके। डॉक्टर जयशंकर ने आज जमैका के किंगस्टन में वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में परिवर्तनशील दुनिया और भारत की प्रतिक्रिया विषय पर लोगों को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने वैश्विक दक्षिण सुधारित बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीयता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज बिहार के बोधगया पहुंचे। हवाई अड्डे पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति तो लाम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा करेंगे। राष्ट्रपति तो लाम के साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ एक व्यापारी प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति आज दोपहर बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद राज्य में नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नए मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को राज्य में केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन नामों को भाजपा संसदीय पर्यवेक्षक बोर्ड ने मंजूरी दी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसफ विजय की पार्टी तमिलगा विक्ट्री कड़गम 108 सीटें लेकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के शानदार चुनावी प्रदर्शन के बाद नवनिर्वाचित टीवी के विधायकों ने आज चेन्नई के पास पन्नयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित विधायक दल की बैठक में श्री विजय को औपचारिक रूप से अपना नेता चुना। एक रिपोर्ट।
4: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस पार्टी में अनौपचारिक चर्चाएं जारी हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगा। यूडीएफ सूत्रों ने संकेत दिया है कि विधायक दल की बैठक दिल्ली से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। नव निर्वाचित विधायकों में वर्तमान विपक्ष के नेता वी डी सीताशान, पूर्व विपक्ष के नेता और पूर्व केपीसीसी अध्यक्ष रमेश चेन्नितिल्ला और वर्तमान केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ प्रमुख वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुलुथी की रिपोर्ट के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार।
1: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सीआर पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉ. भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति भारत की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
6: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल पीएचडी थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
7: रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन।
1: भाजपा सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और राजेंद्र गुप्ता ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कथित तौर पर राज्यतंत्र के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि वो हाल ही में पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसदों को निशाना बनाने के लिए राजतंत्र का इस्तेमाल कर रही है।
7: मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पॉल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। जब तक हम आपके साथ थे हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए।
1: इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी सांसदों का भाजपा में विलय असंवैधानिक है और उन्होंने राज्यसभा से उनकी अयोग्यता की मांग की। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए उत्तराखंड से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी ऑनलाइन निवेश घोटालों में शामिल थे। उन्होंने कहा कि वो साइबर जालसाजों के लिए फर्जी बैंक खाते बनाने और वित्तीय लेनदेन में सहायता करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत के 2 पत्रकारों ने देश में साइबर अपराध का पर्दाफाश करने वाली चित्र आधारित रिपोर्टिंग परियोजना के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा तथा नतालिए ओबिको पियर्सन को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। उन्होंने ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के लिए तैयार की थी। एक रिपोर्ट।
8: हनोई के रिपोर्टर अनिरुद्ध घोषाल को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग वर्ग में विजयी घोषित किया गया है। उन्होंने अमेरिका की बॉर्डर पेट्रोल द्वारा गुप्त रूप से इस्तेमाल किए जा रहे व्यापक निगरानी उपकरणों की जांच की जिन्हें मूल रूप से सिलिकॉन वैली में विकसित किया गया था और बाद में चीन में उन्नत रूप से विकसित किया गया। इस श्रृंखला ने चीन और अन्य देशों द्वारा इनके उपयोग को भी उजागर किया। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: भारत सूडान विदेश कार्यालय परामर्श का 9वां दौर कल पोर्ट सूडान में आयोजित किया गया। परामर्श की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका मामलों के संयुक्त सचिव और सूडान के विदेश मामलों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवर सचिव ने की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों देशों ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मध्य चीन के हुनान प्रांत में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में 21 लोग मारे गए और 61 अन्य घायल हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 0.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 246 अंक गिरकर 77,024 पर जबकि निफ्टी 73 अंक लुढ़ककर 24,047 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसी स्थिति रह सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात ने फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमरीका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 800।
8: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
10: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
11: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
12: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
13: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
14: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
12: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
11: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
12: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
14: कॉल करें 87894 18744।
12: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
14: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
12: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
14: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
12: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861164।
15: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है, और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग

0: प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पे जो बनने वाली हो सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्ते, निदेशक सीबीएसई पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जिसमें आप अपने वार्ड का एडमिशन दिलाना चाहते हैं। वहाँ क्लासरूम में बच्चों के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बॉडी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। साथ साथ आप 10th और 12th के सीबीएसई का रिजल्ट भी देखने का मौका मिलता है। यदि अबव 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस एवं रिजल्ट संतोषजनक है तो आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद।
2: Last 10th board result 2025. Outstanding performance. 50 students scored above 90% and no students scored below 80%. Truly शानदार achievement.
3: लगातार तीन वर्षों 2023, 2024 और 2025 में district topper in commerce stream देने का गौरव।
2: Visit करे CBSE Public School, बसडीला खास गोपालगंज या contact करे 7633970104।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
6: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिद्म 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बानी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा। आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाई।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
3: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
4: कहाँ पर?
3: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
4: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
3: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
4: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569650।
5: भारत के 24 राज्यों में 160 से अधिक शहरों में 280 से ज्यादा स्कूल्स के साथ एजुकेशन में एक ट्रस्टेड नेम बिरला।
4: अब वही लेगेसी, वही एक्सेलेंस आ गया है आपके शहर गोपालगंज में।
5: इंट्रोड्यूसिंग बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशंस आर नाउ ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 7।
4: और खास बात, प्ले ग्रुप के लिए लिमिटेड पीरियड फ्री एडमिशन।
5: मॉडर्न एजुकेशन विथ AC क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, लाइब्रेरी एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी।
4: बिकॉज लर्निंग इज बियॉन्ड क्लासरूम्स, म्यूजिक, डांस, योगा एंड जूडो क्लासेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑल टीचर्स आर BEd qualified and follow CBSE guidelines, ensuring quality education.
5: Visit today, Yadopur Road, Sareya Ward number 1, Shambhu Path, Saraswati Talkies ke paas Gopalganj.
4: Call now 775-994-9440 or 775-994-9441.
6: Top Ramu Kaka, hai electric ke itna sara saman kahan se kharid ke le aao tani?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओतनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6750।

दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। 2:49 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं सो में जुड़ने के लिए माध्यम है आपके पास व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 9855788291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम, पता और गाने की फरमाइश के साथ। उसके अलावा आप रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं या फिर कॉल करिए हमें 7277166696 पे। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज है, लिख रहे हैं कि नमस्कार जी, हम भी जुड़ गए हैं। प्रदीप जुड़े हुए हैं नागपुर महाराष्ट्र से। फरमाइश है, क्या खूब लगती हो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है। एक और यहाँ मैसेज है, और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हमें भी गाना सुनना है। हेलो मैम। और रंजीत चौधरी जुड़े हुए हैं दुबई से और इनको गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। और अभी आपकी फरमाइश जो है इंस्टाग्राम पे प्ले किए थे। बने रही हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो जी, मेरा भी फरमाइश है। और राजकुमार यादव जुड़े हुए हैं गाने की फरमाइश के साथ। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है। बने रही हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे तो अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है, दीनदयाल कुमार जुड़े हुए हैं और इनको सुनना है गाना तुमसे मिलके दिल का जो हाल है क्या करे। सोनू निगम की आवाज़ में सुनना चाहते हैं। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुँच रही है, अपने गाने को इंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
1: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
0: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और यहाँ सोनू सिंह जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका और सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम को दुबई से और गाने की फरमाइश है पालकी में होके सवार चली रही। बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। बहुत बहुत स्वागत है शो में और बढ़ेंगे आगे। यहाँ मैसेज है लिखे कि बहुत इंतजार के बाद आज एक हफ्ता हो गया है और गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं विनोद कुमार चौहान है मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है आपका और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रही है हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग और आगे लिखते हैं कि आकर्षण की वजह सुंदरता हो सकती है लेकिन प्रेम का आधार हमेशा व्यवहार ही रहता है। और इस मैसेज के साथ जुड़े हुए हैं नाम है इनका सानिया सैफी जी चखसना से। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में और बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं कौन है और कहां से जानते हैं। और यहां कॉल रिसीव करने से पहले ही कॉल कट चुका है तो चलिए बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं रंजीत राजकिशोर यादव हैं जुड़े हुए हैं और इनको सुनना है गाना तो वॉइस पहुंचा हुआ है, चलिए सुनते हैं कौन से गाने की फरमाइश की है ये।
1: हाय मैम, मेरा नाम राजकुमार यादव, हरमंदिर तो जिला गोपालगंज। अभी तो मैम मैं दिल्ली में हूँ और मुझे कहूँ कि मैं आज दिल्ली में किराया पता रख ले रहा हूँ और मेरे दोस्त भी है अभी बहुत सारे दोस्त हैं उनके साथ में मिल जाऊँ बता दीजिएगा।
0: नाइन्टी पॉइंट फोर रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और राकेश राजकिशोर जी, अगर आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो अपनी वॉइस फिर से क्लियर रिकॉर्ड करके भेजिए। आपके गाने की फरमाइश जो है वो समझ में नहीं आया कि कौन से गाने की फरमाइश है आपकी तरफ से, या फिर गाने का नाम लिख के भेज दीजिए, हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर देंगे। और यहाँ अगली फरमाइश कॉल के माध्यम से फिर पहुँच चुका है तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन है और कहाँ से। हेलो
2: हेलो, नमस्ते दी।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
2: कैसी हैं आप?
0: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसी हैं?
2: आप ठीक है, अपना बताइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ, आप अपना नाम बता दीजिए।
2: नेहा कुमारी।
0: कहाँ से बात कर रही हैं नेहा जी?
2: सिरिसिया बाबू टोला से।
0: अच्छा, सिरिसिया बाबू टोला।
2: हाँ।
0: अच्छा अच्छा, ये कहाँ पड़ता है आपका सिरिसिया बाबू टोला?
2: सासामुसा में।
0: अच्छा, तो आज गाना कौन सा सुनना है नेहा जी आपको?
2: भोजपुरी सॉन्ग सुना दीजिए कोई भी।
0: अगर आप बताती तो ज्यादा अच्छा होता।
2: कोई भी सुना दीजिए न्यू सॉन्ग।
0: तो किसकी आवाज में सुनिएगा नया गाना?
2: प्रमोद प्रेमी की आवाज में सुना दीजिए।
0: प्रमोद प्रेमी की आवाज में नया सॉन्ग।
2: हाँ।
0: चलिए तो गाना प्ले कर रहे हैं आपकी।
2: ठीक है
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सो में कॉल की।
2: ठीक है,
0: ओके।

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ मैसेज की बात करें तो मैसेज है लिख रहे हैं कि बाबू सरी से हमारे गांव के पीछे पड़ता है और गांव बहुत ही अच्छा है। और चखसना से हैं सानिया सैफी जी और लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए आपको कि आपके गांव के पीछे पड़ता है। और चलिए बढ़िया गांव है और गांव सभी अच्छे ही होते हैं। और बढ़ेंगे आगे। यहाँ अगला मैसेज है लिख रहे हैं नमस्कार जी हमारा भी गाना है सुनवा दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं इंद्र देव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गाना अच्छा नदिया के पार के गाना सुनना है तो कन्फर्म करिए कि आपको नदिया के पार के कौन सा गाना सुनना है। और एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि क्या गाना है पागले बना दलूँ मैम। और मैसेज करने वाले हैं पाजी यूपी चौहान से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है राजकिशोर यादव जी जुड़े हुए हैं और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश जो है क्लियर करके भेज दिए हैं। और बोल रहे हैं कि दिल में नीलकमल की आवाज़ में सुनना है दिल के किराया। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर दी है। आवाज़ पहुँचिए अपने गाने को एंजॉय करिए सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
3: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
3: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
3: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ मैसेज की बात करें तो सोनू सिंह जुड़े हुए हैं दुबई से, लिख रहे हैं कि मैं, मेरा भी सॉन्ग है, सुनवा दीजिए। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। आपकी बारी आने पे बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और बढ़ेंगे आगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। और मैसेज है यहाँ लिख रहे हैं कि मैम आपकी पिक्चर देखने के लिए क्या करूँ, जो आपको देख भेज देंगे हो। और पाजी यूपी से जुड़े हुए हैं, तो मेरा पिक्चर देखना है, अगर मुझे देखना है तो फिर आपको रेडियो रिमझिम आना होगा। आप वहाँ देख सकते हैं या फिर रेडियो रिमझिम के फेसबुक पे आप जा सकते हैं, वहाँ भी मेरा फ़ोटो आपको मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो तो, उसके अलावा अगर आप सोचिएगा कि मैं आपको अपना पिक्चर भेज दूँ तो ऐसा नहीं हो सकता है। और बढ़ेंगे आगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि बलम परदेसी हो गए लें हम का करी। और मैडम जी नमस्ते, तारकेश्वर माझी दुबई से जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, सुना दीजिए। बिल्कुल गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आगे लिखते हैं कि खाली बैठे हो तो एक काम मेरा कर दो ना, खाली बैठे हो तो एक काम मेरा कर दो ना, मुझको एक अच्छा सा जख्म अदा कर देना। बड़े प्यार से देते हैं पंछियों को दाना पानी, इतनी ही परवाह है तो पिंजरे से रिहा कर दो ना। और मैसेज के साथ जुड़े हुए हैं तारकेश्वर माझी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और फरमाइश है तो आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा भी सॉन्ग है, बजा दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं वारिस खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपकी गाने की फरमाइश है तो अभी एक सप्ताह होने में, एक दिन बाकी है, आपकी गाने की फरमाइश जो है कल प्ले करेंगे, कल भेजिएगा। और बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैं, मेरा भी गाना है, बोलिए और सुनिए मैम। बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है। और विनोद कुमार चौहान जुड़े हुए हैं मुंबई से, और इनको सुनना है गाना। और गाने का बोल है इनके, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। बिल्कुल मौका मिलने पे सबको ही बता देते हैं, और कभी कभी बिना मौका के भी लोग बता देते हैं। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुंच रही है। और मौका के इंतज़ार में पता चलता है कि आप मौका का इंतज़ार करते रहें और कोई और बता के लेके चला गया। तो कभी कभी मौका का इंतज़ार नहीं करिए, मौका निकालना भी पड़ता है। फिलहाल इंजॉय करिए अपने गाने को, सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: रामू हरिया कल तैयार रही लो परारी जलाए चले के बा।
1: ठीक बा भैया।
2: ए भैया एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
0: ऐसा का है जरावला से काहे मना होता।
2: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
0: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
2: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
0: अच्छा तो अब से ठूठ के हमनी के जराए जाना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा करी भाई जानकारी दे के।
2: याद रखी ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज है, लिख रहे हैं कि हमको भी गाना सुनना है, फरमाइश करें। और सानिया शफी हैं चकचना से, बिल्कुल कर सकती हैं, पूरी कोशिश रहेगी हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करें। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि 2 दिन से वेट कर रहा हूँ। ओहो, बिल्कुल वेट कर रहे हैं, थोड़ा और वेट करिए और बढ़ेंगे आगे। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सही है और बिल्कुल मुझे याद रहता है कि हम गाना किसका कब प्ले किए हैं, और आपकी जो एक सप्ताह होगी वो कल होगी। और वारिश खान है कतर से, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका, और गाने की फरमाइश कल करिएगा, हम कल पूरी कोशिश करेंगे आपकी गाने की फरमाइश प्ले करने की। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम मेरा गाना सुनाने के लिए, और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है इंस्टाग्राम से, और फरमाइश करने वाले हैं, नाम है इनका विकास चौधरी, जुड़े हुए हैं दुबई से, और इनको सुनना है गाना सरसों के सगिया। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश है जो प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुँचिए, अपने गाने को एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
1: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक। सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
0: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
1: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और सीसीटीवी कैमरा की सुविधा,
0: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता: हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 800-222-1969 या 911-701-8350।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ मैसेज पहुँच गया, लिख रहे हैं गाना बजाने के लिए धन्यवाद, विकास चौधरी जुड़े हुए हैं। और बढ़ेंगे आगे एक और यहाँ मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज की तरफ काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं। और जैसे जैसे शो का समाप्ति का समय होता है वैसे वैसे शो में लोग दस्तक देना शुरू करते हैं। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हम जुड़ गए बानी, कैसन बानी, तबीयत ठीक बानो, बिल्कुल बढ़िया बा। और अहमद अली है सारे वार्ड नंबर 1 से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि डेडिकेट है सभी श्रोता जिलों को और गाने हैं हर किसी के दिल में एक लड़के का या लड़की का ख्याल रहता है। और गाने की फरमाइश के साथ हैं सानिया सैफी चखसना से, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है, बनी रही है हमारे साथ। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान है क्या कहे, यही तो हमारी जान है। और सुनी जी आपकी इमेज देखने की क्या लिखे हैं, भले भाई के लिए हो। और ये मैसेज करने वाले हैं लाल सिंह जी लखनऊ से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि उदास नहीं होना क्योंकि मैं साथ हूँ, उदास नहीं होना क्योंकि मैं साथ हूँ, सामने ना सही पर पास हूँ, पलकों के बंद करते दिल में देखना, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। क्या बात है। और इस मैसेज के साथ है वारिस खान जी कतर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि ना नींद आती है रातों में ना दिल में करार आता है, ना नींद आती है रातों में ना दिल में करार आता है, शाम होते हैं उस बेवफा का चेहरा मुझे याद आता है, उसे मोहब्बत है इतनी उसे कह नहीं सकता, और कोई उसे कह दो मुझे और जख्म ना दे, मैं अब सह नहीं सकता। क्या बात है। और इस मैसेज के साथ है पाजी यूपी से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और यहाँ मैसेज है, मुन्ना भरद्वाज जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अबूधाबी से सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम को और गाना सुनना है परदेश जाके परदेश या भूलना जाना पिया, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रही है हमारे साथ। और यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास है वो भी इंस्टाग्राम से ही है। और मैसेज करने वाले हैं सोनू सिंह जी और इनको सुनना है गाना पालकी में होके सवार चली रहे, तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर रहे हैं और आपका इंतज़ार भी ख़त्म हुआ। एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, राजसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ सुन है दुबई से इनके तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं थैंक यू गाना बजाने के लिए। बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ और अगली फरमाइश से पहले यहाँ और भी कुछ मैसेज है और लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं कि मैम क्या मैं जाऊं, आप नहीं भेजेंगी? बिल्कुल नहीं, हम नहीं भेज सकते। और लिख रहे हैं कि वैसे गाना अच्छा था। जी हाँ बिल्कुल, गाना तो काफ़ी अच्छा था, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन फ़ोटो तो मैं बिल्कुल नहीं भेजने वाली हूँ। और बढ़ेंगे आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हम लोग जाते ही कब हैं आप याद में 11 बजे से सुन रहे हैं। ओहो चलिए बढ़िया है, जाते नहीं हैं तो। और मैसेज करने वाले हैं अहमद अली सारे वार्ड नंबर 1 से, लेकिन 100 में दस्तक तो आप दिए हैं अभी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप 100 सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, कब से सुन रहे हैं? आप जब दस्तक दीजिएगा 100 में तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप भी आ चुके हैं। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो भी नहीं जो मुस्कान देती है, अच्छे दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेती है। हो क्या बात है। और इस मैसेज को करने वाले हैं दिनेश मिश्रा जी दिल्ली से। और एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है वारिस खान जी की तरफ से, लिख रहे हैं कि टूटा गुलाब की शायरी, फूल है गुलाब का जो टूट कर भी खुशबू दे जाता है, फूल है गुलाब का जो टूट कर भी खुशबू दे जाता है, और प्यार करना उसी से जो रूठ कर भी अपना हो जाता है। फूल है गुलाब का मेरी जान तोड़ मत लेना, और प्यार है और बहुत प्यार करते हैं तुमसे हमें छोड़ मत देना, मत मारो पानी में पत्थर उसे भी कोई पीता होगा, तुम मत हो उदास मेरी जान, तुम्हें कोई देख कर

जीता होगा। हो क्या बात है वारिस जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शो में जुड़े अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है दुबई से तारकेश्वर माझी जी का, और इनको सुनना है बलम परदेसी हो गई ला। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुँचिए, अपने गाने को इंजॉय करिए सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: के 24 राज्यों में 160 से अधिक शहरों में 280 से ज्यादा स्कूल्स के साथ एजुकेशन में एक ट्रस्टेड नेम बिरला।
1: अब वही लेगेसी, वही एक्सेलेंस आ गया है आपके शहर गोपालगंज में।
0: इंट्रोड्यूसिंग बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशंस आर नाउ ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 7।
1: और खास बात, प्ले ग्रुप के लिए लिमिटेड पीरियड फ्री एडमिशन।
0: मॉडर्न एजुकेशन विथ AC क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, लाइब्रेरी एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी।
1: बिकॉज लर्निंग इज बियॉन्ड क्लासरूम्स, म्यूजिक, डांस, योगा एंड जूडो क्लासेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑल टीचर्स आर BEd qualified and follow CBSE guidelines, ensuring quality education.
0: Visit today, Yadopur Road, Sareya Ward number 1, Shambhu Path, Saraswati Talkies ke paas, Gopalganj.
1: Call now 775-994-9440 or 775-994-9441.
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज है, लिख रहे हैं कि जेकर बलमा परदेसी सखी, ये गाना बजाने वाले भाई को दिल से धन्यवाद है, लगता है कि मेरा ही फरमाइश बज गया। और मैसेज करने वाले हैं धनेश मिश्रा जी दिल्ली से। और यहाँ बिल्कुल काफ़ी बढ़िया गाना था और गाना की फरमाइश करने वाले थे तारकेश शर्मा जी दुबई से। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि जी मैम दोपहर के बाद एक बार फिर से जुड़ गया हूँ रेडियो रिमझिम से, और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैसेज करने वाले हैं मैयर MP से सुनील कुशवाहा जी। और बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैम हमारा गाना बजा दीजिए, रंजीत चौधरी जी हैं दुबई से, तो आपकी गाने की फरमाइश जो है अभी प्ले किए थे। और फिर से दोबारा दूसरा फरमाइश, तो ऐसे तो एक सप्ताह में एक ही गाने की फरमाइश प्ले होती है, तो आपका तो दूसरा फरमाइश पहुँचा हुआ है तो नहीं हो सकता है। और यहाँ एक और मैसेज जो है, लिख रहे हैं कि अरविंद कुमार सिंह जुड़े हुए हैं फ्रॉम गोपालगंज से, बहुत बहुत स्वागत है। और आगे लिखते हैं कि सांस लेने से तेरी याद आती है, सांस लेने से तेरी याद आती है, सांस नहीं लेता तो जान भी जाती है, कह दूँ कैसे कि इस सांस से जिंदा हूँ मैं, ये सांस भी तो तेरी याद के बाद आती है। क्या बात है अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन है, कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो।
4: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
4: नमस्कार।
3: नमस्कार, नाम बता दीजिए।
4: तनी कॉलो वाला पर दया करी जी।
3: का करी, कॉलवा उठाए जाने तो ना आवेला, का करी वैसे ना हो पाएला।
4: हमने सारा मतलब कृषि दरगाह जिला की बात से बोल रहे हैं।
3: कैसन बानी?
4: ठीक बानी।
3: तो गाना कौन सुने के बाद?
4: रेडियो का है, आवाज थोड़ा धीमा आवत है।
3: कल के वजह से, कल बारिश भइल हो का वजह से भइल हो, ठीक बा बता देना।
4: कल कल तो 2:30 बजे से प्रोग्राम बंद भ हुए, तो पता ना कब बजे चालू भ हुए।
3: शाम के चालू भ हुए, सुनो जी यहीं शायद ये चालू कहीं। हां,
4: गाना सुनने के बाद हमरा आज भोजपुरी में बोलत हैं।
3: जी जी बिल्कुल,
4: मोहम्मद रफी साहब के गाना। कि मेरी बाहों में आप आते तो बहुत बात होती। बहुत अच्छा गाना बा, अगर मिल जाओ तो एक तरह के बजा दी तो बहुत बहुत मेहरबानी हुई।
3: बिल्कुल मिली अगर गाना बात।
4: गाना मेरी बाहों में आते तो आप बहुत

0: जी और सुनवाई के भी बा
1: सुनवाई के बा पहले रोवा के दिल्ली भाई दिल्ली से दिलीप राम जी के दिनेश मिश्रा जी के इरफान भाई दुबई के संतरा कुशवाहा गोपालगंज शबनम हीना
0: जी जी और गाना बाटे मेरी जिंदगी में आते तो और बात होती
1: जी
0: रफी साहब की आवाज में है
1: जी रफी साहब का आवाज
0: जी तो गाना प्ले कर दिए हैं
1: बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल की एंजॉय करिए अपने गाने को जी।

0: एडमिशन फ्री।
1: कहाँ पर?
0: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
0: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
1: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569650।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। 3:56 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि एक जैसे दोस्त सारे नहीं होते, कुछ हमारे होकर भी हमारे नहीं होते। अपना दोस्ती करने का बाद महसूस हुआ कि कौन कहता है कि तारे ज़मीन पर नहीं होते। और ये मैसेज करने वाले हैं धनेश मिश्रा जी दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग और नमस्ते जी, मैं भी प्रोग्राम से जुड़ गया हूँ आपके प्रोग्राम, इस समय जिला अयोध्या से सुन रहा हूँ और कल हम भी आपके जिला गोपालगंज आएंगे, हमारे दोस्त की लड़की का शादी है। और मैसेज करने वाले हैं राजेंद्र कुमार गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बिल्कुल आइए गोपालगंज में, स्वागत है आपका। और यहाँ बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया चल रहा है सोनी मैडम जी, और कोई गीत में हमें भी शामिल कर लीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। गुरु नानकपुरा बठिंडा पंजाब से जुड़े हुए हैं किशोर साबलनिया जी, सवित्री साबलनिया, सुमन साबलनिया, बेटी अंशु के साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बने रहिए हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ इरशाद मास्टर जी हैं, लिख रहे हैं कि बाय बाय मैडम जी, फिर मिलेंगे। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आज का शो बहुत ही बढ़िया लगा, बाय बाय सोनी जी। और अनिल जी हैं छोटपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और आगे बढ़ेंगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, टुडे प्रोग्राम रन रियली गुड एंड रिक्वेस्ट ऑल सॉन्ग ब्यूटीफुल एंड स्वीट, सो थैंक यू ऑल, व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट अ स्वीट सॉन्ग चॉइस। मिस्टर निसार जी फ्रॉम सिवान से थैंक यू रिक्वेस्ट दिस सॉन्ग के लिए। और सोनू जी हैं सऊदी अरब से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बने रहिए हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश और आखिरी फरमाइश की तरफ, और आज की आखिरी फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है, वो है सानिया सैफिया चकसना से, और इनको सुनना है गाना हर किसी के दिल में एक लड़की या लड़के का ख्याल रहता है, तो बिल्कुल रहता है। और यहाँ गाने की फरमाइश है, तो आपकी फरमाइश जो है प्ले कर दिए हैं, और इन्जॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। फिर मिलेंगे आप सभी से, तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और साथ में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट।

0: देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
5: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034-48652 पे।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
10: रेडियो रिमझिम,
9: सुनो दिल से।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइंस तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 8570-32042 पे।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
9: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
9: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
11: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
9: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
9: संपर्क 99-393-65-93।
12: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
9: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
12: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
9: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS नेबोश और IOSH PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
12: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
9: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
12: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।
13: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
14: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
15: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200-42-34-03 6200-42-34-03।
16: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
17: All right.

दुनिया माया के बाजार बा, यहाँ केहू के केहू नइखे। भाई बहिन बाप माई सगे संबंधी, ई झूठो के एगो रिश्ता नाता बा कहे खातिर। सभे आइल अकेले बा और जाई अकेले।

रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा

0: एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा। और हमारे एनुमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रिजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये दो फेजों में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एनुमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एनुमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एनुमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एनुमरेशन पर ज्यादा फोकस करें ताकि सही सही जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हूँ सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
2: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
1: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
2: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
2: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
2: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97076575।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
10: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
11: रेडियो रिमझिम।
10: सुनो दिल से।

0: मेरे किरदार को जाने का हो।
1: रामू हरिया कल तैयार रहिए लो पराली जलाए चले के बा।
2: ठीक बा भैया।
3: ए भैया एगो सूचना सुनला है, कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
1: ऐसा का है, जरावला से काहे मना होता।
3: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
1: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावो तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
3: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
1: अच्छा तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कर लू भाई जानकारी दे के।
3: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
7: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
6: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
5: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
6: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
6: और 90-97-61-60-02।
8: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
9: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
10: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
9: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
12: ऑलराइट।

0: फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
1: सेंट जॉन स्कूल, सासामुसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
0: भारत के 24 राज्यों में 160 से अधिक शहरों में 280 से ज्यादा स्कूल्स के साथ एजुकेशन में एक ट्रस्टेड नेम बिरला।
1: अब वही लेगेसी, वही एक्सेलेंस आ गया है आपके शहर गोपालगंज में।
0: इंट्रोड्यूसिंग बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशंस आर नाउ ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 7।
1: और खास बात, प्ले ग्रुप के लिए लिमिटेड पीरियड फ्री एडमिशन।
0: मॉडर्न एजुकेशन विद AC क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, लाइब्रेरी एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी।
1: बिकॉज लर्निंग इज बियॉन्ड क्लासरूम्स, म्यूजिक, डांस, योगा एंड जूडो क्लासेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑल टीचर्स आर BEd qualified and follow CBSE guidelines, ensuring quality education.
0: Visit today, Yadopur Road, Saraya Ward No. 1, Shambhu Path, Saraswati Talkies ke paas, Gopalganj.
1: Call now 775-994-9440 or 775-994-9441.
2: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रिजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेजों में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पर ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हों सही से ही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डिरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7055006144 या 7870331444।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करें 87894 18744।
9: रामू हरिया, कल तैयार रही लो पराली जलाए चले के बा?
10: ठीक बा भैया।
11: ए भैया, एगो सूचना सुनला हा, कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दियल जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लागी।
12: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता?
11: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
12: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता?
11: एकर बढ़िया विकल्प यह बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली, ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
12: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
11: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना हा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
13: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रिक्वेंसी 90.4 रेडियो रिमझिम। सुनो दिल।

0: नमस्ते, निदेशक CBSE पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जिसमें आप अपने वार्ड का एडमिशन दिलाना चाहते हैं। वहाँ क्लासरूम में बच्चों के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बॉडी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। साथ साथ आप 10th और 12th के CBSE का रिजल्ट भी देखने का मौका मिलता है। यदि अबव 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस एवं रिजल्ट संतोषजनक है तो आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद।
1: Last 10th board result 2025. Outstanding performance. 50 students scored above 90% and no students scored below 80%. Truly शानदार achievement.
2: लगातार तीन वर्षों 2023, 2024 और 2025 में district topper in commerce stream देने का गौरव।
1: Visit करे CBSE Public School, बसडीला खास गोपालगंज या contact करे 7633970104।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
6: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
7: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए चले के बा।
8: ठीक बा भैया।
9: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
10: ऐसा का है, जरावला से काहे मना होता।
9: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
10: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बताओ तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
9: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। इसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसा पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
10: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
9: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
12: All right.

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
6: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
8: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
8: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
3: कहाँ पर?
2: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, चवही खास, गोपालगंज,
3: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
2: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
3: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569650।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
6: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-72-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिद्म 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: भारत के 24 राज्यों में 160 से अधिक शहरों में 280 से ज्यादा स्कूल्स के साथ एजुकेशन में ट्रस्टेड नेम बिरला।
1: अब वही लेगेसी, वही एक्सेलेंस आ गया है आपके शहर गोपालगंज में।
0: इंट्रोड्यूसिंग बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशंस आर नाउ ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 7।
1: और खास बात, प्ले ग्रुप के लिए लिमिटेड पीरियड फ्री एडमिशन।
0: मॉडर्न एजुकेशन विथ AC क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, लाइब्रेरी एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी।
1: बिकॉज लर्निंग इज बियॉन्ड क्लासरूम्स, म्यूजिक, डांस, योगा एंड जूडो क्लासेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑल टीचर्स आर BEd qualified and follow CBSE guidelines, ensuring quality education.
0: Visit today, Yadopur Road, Saraya Ward No. 1, Shambhu Path, Saraswati Talkies ke paas Gopalganj.
1: Call now 775-994-9440 or 775-994-9441.
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रिजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हो सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
5: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
1: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
0: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉलर्स 9

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे।
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
7: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
7: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
10: कॉल करे 87-894-18744।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
10: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
10: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67 666।
2: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
6: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
7: रेडियो रिमझिम,
6: सुनो दिल से।

0: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
1: कहाँ पर?
0: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
0: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
1: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज, कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: ऑलराइट।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

रावण ने छल कपट करके सीता जी का हरण किया। साधारण मनुष्यों की भांति दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम से लौटते हुए शिव जी ने प्रभु को देखा तो उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। उन्होंने उन्हें सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और अपने मार्ग पर चलते रहे। सती के मन में शंकर की ये दशा देखकर संदेह उत्पन्न हो गया। उन्हें शंका हुई कि जो स्वयं जगत का ईश्वर है, देवता मनुष्य तथा मुनि जिसके सामने सिर नवाते हैं, क्या वह एक राजपुत्र को इस प्रकार प्रणाम करेगा।

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
1: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में। टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
2: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
1: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
2: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
1: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
2: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
3: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
1: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
7: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
1: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434003।
10: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
11: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
12: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
11: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
12: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
11: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
12: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 88252149446।

भगवान शंकर के अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी जब सती की शंका दूर नहीं हुई तो शिव ने उन्हें स्वयं जाकर परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। सती के सम्मुख समस्या ये थी कि वो परीक्षा ले तो किस प्रकार। सोच विचार के पश्चात उन्होंने सीता का रूप धारण किया और उस मार्ग की ओर चली जिधर से सीता के विरह में व्याकुल श्री रामचंद्र आ रहे थे।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: नन्ना मुन्ना लाही देश का।
4: निरीक्षण किया, सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से को शीघ्र ठीक कराने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को होगा विस्तार, शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। गया एयरपोर्ट पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति का किया स्वागत। और मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज भागलपुर के विक्रमशिला सेतु का हवाई निरीक्षण किया। संवाददाताओं से बातचीत में भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से को जल्द से जल्द ठीक कराने का निर्देश दिया है।
5: माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा स्वयं एरियल सर्वे किया गया है, जो हमारा पुल का जो ब्रिज पार्ट है उसका, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि शीघ्र हम लोग काम स्टार्ट करें, आम लोगों के आने जाने के लिए इस मार्ग को हम लोग सुगम बनाए, पूरी टीम उस पे काम कर रही है।
4: इससे पहले मुख्यमंत्री ने मुंगेर में मुंगेर भागलपुर गंगा पथ निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने परियोजना स्थल जाकर कार्यों का निरीक्षण भी किया। मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत मंत्रिमंडल के कई सदस्य, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और NDA के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया जाएगा।
6: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, NDA के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, चिराग पासवान जी हों, गिरिराज जी हों, नित्यानंद राय जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
4: इस बीच शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गांधी मैदान में आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार पिछली सरकार के लिए तय फार्मूले के आधार पर ही होगा। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी घटक दलों को मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा।
7: बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, मंत्रिमंडल का विस्तार पूर्णतः कर लिया जाएगा। जो फॉर्मूला पिछली बार था उसमें बदलाव के कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देते हैं। इतना जरूर है कि जदयू और भाजपा के कोटे से कुछ मंत्रियों की शपथ लेना बाकी रह गया था, संभवतः इस बार वो भी पूरा कर लिया जाएगा।
4: भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मुंगेर में पार्टी की ओर से आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यक्रम सह महाअभियान का उद्घाटन किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सरकार और पार्टी के बीच समन्वय बनाकर चलने का आह्वान किया। मुंगेर भाजपा जिलाध्यक्ष अरुण कुमार पोद्दार ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में कार्यकर्ताओं को संगठन के बारे में मार्गदर्शन दिया जाता है।
8: देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग। इसमें अपने कार्यकर्ताओं को संगठन के बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा दिशा निर्देश और मार्गदर्शन दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता होते हैं।
4: इससे पहले श्री चौधरी मुंगेर के ज्योति मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने तिरुपति बालाजी की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री बिहार योग विद्यालय में आयोजित श्रीनिवास कल्याणोत्सव आरती समारोह में भी शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को नमन किया। इसके बाद राष्ट्रपति तो लाम वियतनामी मठ पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सहभागिता की। उनके इस दौरे को भारत और वियतनाम के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पूर्व गया हवाई अड्डे पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने राष्ट्र

0: एकता, निरंतर सीखने की ललक और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की अटूट भावना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय सेना में 4 दशकों के अपने अनुभव भी साझा किए। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के दीवानी और कुछ फौजदारी मामलों का निपटारा किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का भी निष्पादन लोक अदालतों के माध्यम से किया जाएगा। लोक अदालत के लिए सभी जिला और अनुमंडल न्यायालयों में विशेष पीठों का गठन किया गया है। बेगूसराय के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत ने लोक अदालत के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
1: राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शुलानीय मामले, दीवानी मामले, दुर्घटना बीमा दावा, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भू अधिग्रहण, राजस्व बैंक ऋण विवाद, बिजली एवं पानी बिल माप तौल वन अधिनियम, साथ ही इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में पहली बार ट्रैफिक चलान के मामले का भी समाधान होगा। वैसे चलान जो 90 दिन से ज्यादा पुराना उसका निस्तारण 50% छूट पर किया जाएगा। ट्रैफिक चलान के मामले के निष्पादन के लिए अलग से बेंचों का गठन किया गया है।
0: इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि लोक अदालत के आयोजन की जानकारी देने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जागरूकता रथों को रवाना किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 2026 के लिए क्षेत्रवार जनसंख्या के आंकड़े और चौहद्दी का प्रारूप प्रकाशित कर दिया है। प्रारूप पर 18 मई तक दावा और आपत्ति ली जाएगी। आपत्तियों का निपटारा 22 मई को किया जाएगा, जबकि प्रारूप सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जून तक किए जाने की संभावना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और अररिया समेत 12 जिलों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान वज्रपात का भी अलर्ट है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर, पश्चिम एवं पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर, जबकि शेष भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तर, पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान हाजीपुर में सबसे अधिक 59 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बिहार लोक सेवा आयोग ने एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार कुल 1230 पदों पर नियुक्ति होगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी। अभ्यर्थी 31 मई तक आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा जुलाई महीने में संभावित है। प्रदेश के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट में नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नामांकन के लिए प्रथम मेधा सूची का प्रकाशन कर दिया।

0: है। इस सूची के आधार पर 12 मई तक छात्र आवंटित विद्यालय में नामांकन ले सकेंगे। विस्तृत जानकारी समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध है। गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने 5,639 शिक्षकों से स्पष्टीकरण की मांग की है। ये सभी शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर विद्यालय से गायब पाए गए थे या फिर विलंब से विद्यालय पहुंचे थे। इन सभी शिक्षकों को 72 घंटे के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया गया है।
1: ये एक्चुअली इधर हम लोग मॉनिटरिंग के क्रम में पाया गया कि कुछ शिक्षक जो है ई शिक्षा कोर्स पर मार्क ऑन ड्यूटी करते हुए न तो विद्यालय में पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं और न ही जनगणना का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी सूचना पाने पर जब हम लोगों ने ई शिक्षा कोर्स में उसका विश्लेषण किया तो पाया गया लगभग 5,000 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने ये लगभग मार्क ऑन ड्यूटी ये की हुई थी।
0: पूर्व मध्य रेल के सरायगढ़ और देवघर के बीच 7 मई से अनारक्षित स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। विक्रमशिला सेतु पर यातायात बंद होने के बाद रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन सुपौल, सहरसा, खगड़िया और भागलपुर के रास्ते देवघर तक चलेगी। पूर्व रेलवे के मालदा मंडल अंतर्गत बड़हड़वा रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस और आरपीएफ ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 4 नाबालिग बच्चों को सकुशल बरामद किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक वाहन से 4 लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। सुपौल जिले के सीमा चौकी नरपत पट्टी के पास से एसएसपी और पुलिस की टीम ने 133 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। सासाराम समाहरणालय में शाहबाद क्षेत्र के किसान उत्पादक समितियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में किसानों को आधुनिक विपणन व्यवस्था, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और भंडारण की अत्याधुनिक तकनीकों की जानकारी दी गई। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दोहन ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के जीवन प्रमाणीकरण के लंबित मामलों के निष्पादन के लिए 30 मई तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। भोजपुर जिला नियोजनालय में आज से एक दिवसीय नियोजन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में आई कंपनी ने 35 अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के लिए किया। युवाओं के कौशल विकास और उन्हें रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए छपरा के भिखारी ठाकुर सभागार में 7 मई को एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कैमूर जिला प्रशासन ने भभुआ नगर परिषद के सभापति का कार्यभार उप सभापति रविता पटेल को सौंप दिया है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण के मामले में कटिहार जिला राज्य भर में 4th स्थान पर पहुंच गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर के विक्रमशिला सेतु का हवाई निरीक्षण किया। सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से को शीघ्र ठीक कराने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को होगा विस्तार। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। गया एयरपोर्ट पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति का किया स्वागत। और मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
1: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
0: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
1: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक। सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
0: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
1: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और सीसीटीवी कैमरा की सुविधा,
0: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता: हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 800-222-1969 या 9117018350। घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
0: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
1: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
0: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
1: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
1: पता: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रेजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पर ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हों सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इसमत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 620-3139564। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, AC हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
1: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। CBSE पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक, सेशन 2026 से 27 के लिए, प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
0: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विथ लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
1: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और CCTV कैमरा की सुविधा,
0: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा, 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता, हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 8002221969 या 9117018350।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं, तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिनताई और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
0: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
0: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
2: और 9097160602।
4: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रिजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हों सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्ते, निदेशक CBSE पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जिसमें आप अपने वार्ड का एडमिशन दिलाना चाहते हैं। वहाँ क्लासरूम में बच्चों के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बॉडी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। साथ साथ आप 10th और 12th के CBSE का रिजल्ट भी देखने का मौका मिलता है। यदि अबव 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस एवं रिजल्ट संतोषजनक है तो आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद।
2: लास्ट 10th बोर्ड रिजल्ट 2025, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, 50 स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 90% एंड नो स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिलो 80%, ट्रूली शानदार अचीवमेंट।
3: लगातार 3 वर्षों 2023, 2024 और 2025 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन कॉमर्स स्ट्रीम देने का गौरव।
2: विजिट करें CBSE पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज या कॉन्टैक्ट करें 7633970104।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दें, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आंख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा? आंख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
6: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
7: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
6: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
7: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स।
6: और सबसे खास बात, 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
6: पता, छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
8: भरोसे वाले से लेंगे,
7: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
8: और कीमत भी।
7: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
2: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
4: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
10: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
11: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
10: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का आधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
11: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जॉन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया।

0: तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
1: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
0: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
2: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
0: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।

0: दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट।

0: डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
7: रेडियो रिमझिम,
6: सुनो दिल से।
8: ओ मेरे राजा, राजा।

0: केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज। और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष टी20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से आयातित कपास पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी मदद मिलेगी।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित देश की पहली वाणिज्यिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले सुविधा और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा शामिल है।
1: 2 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से 2 में कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकेंड वाले का, और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
1: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं, और ये जजेस बढ़ाए गए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और कहा कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। उधर निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को निराधार और झूठ बताया है। दक्षिण कोलकाता के जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पूरी मतगणना आयोग के नियमों और विनियमों के अनुसार ही संपन्न हुई। मतगणना के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने के आरोप का खंडन किया गया है और कहा गया है कि कैमरे पूरी मतगणना के दौरान चालू रहे हैं। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा कि चाहे वो इस्तीफा दें या न दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। एक रिपोर्ट।
3: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस खेमे में चर्चाएं जारी है, लेकिन विधायक दल की आधिकारिक बैठक के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने केरलम में 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट पर शानदार जीत हासिल की है। विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी सरकार गठन के लिए राज्यपाल से संपर्क करेगी। यूडीएफ सूत्रों के अनुसार विधायक दल की बैठक दिल्ली से पार्टी कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कड़गम के नवनिर्वाचित विधायकों ने आज औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को नेता चुना है। एक रिपोर्ट।
4: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: पुदुचेरी में मनादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: पुदुचेरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम की अध्यक्षता में आज नव निर्वाचित विधायकों की परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री और पुदुचेरी में भाजपा चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, प्रदेश प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्तवयम को विधानसभा में पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
6: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा, देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में 5 वर्षीय सहयोग के लिए एक समझौता किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चंद्र वर्मा ने कहा कि यह सहयोग भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
7: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 87 अंक फिसलकर 24,033 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.21 रूपये के स्तर पर बंद हुआ।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा किया। इस यात्रा को भारत और वियतनाम के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनईसी ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स ईजीआर को जारी करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सोने की व्यापक खरीद बिक्री में पारदर्शिता लाना है। इसके जरिए सोने की लिवाली और बिकवाली की प्रक्रिया को एक विनियमित तथा सुरक्षित आधार मिलेगा। ये सोना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त वॉल्ट में रखा जाता है और डिपॉजिटरी के जरिए डिजिटली सुरक्षित रहता है। भारत ने आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनी थी। साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार यह खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली 7वें नंबर पर है। मौसम विभाग ने कल बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में कल तेज बारिश की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की, इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष टी20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center approves mission for cotton productivity with an outlay of over 5,600 crore rupees. Also clears emergency credit line guarantee scheme 5.0 to support businesses manage short-term liquidity. Cabinet gives
9: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
11: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
12: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
11: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
12: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
11: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
12: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
11: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
12: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
13: सुनिए सुनिए सुनिए,
14: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
13: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
14: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
13: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
11: भारत के 24 राज्यों में 160 से अधिक शहरों में 280 से ज्यादा स्कूल्स के साथ एजुकेशन में एक ट्रस्टेड नेम बिरला।
12: अब वही लेगेसी, वही एक्सेलेंस आ गया है आपके शहर गोपालगंज में।
11: इंट्रोड्यूसिंग बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल, एडमिशंस आर नाउ ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 7।
12: और खास बात, प्ले ग्रुप के लिए लिमिटेड पीरियड फ्री एडमिशन।
11: मॉडर्न एजुकेशन विद AC क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, लाइब्रेरी एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी।
12: बिकॉज लर्निंग इज बियॉन्ड क्लासरूम्स, म्यूजिक, डांस, योगा एंड जूडो क्लासेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑल टीचर्स आर BEd qualified and follow CBSE guidelines, ensuring quality education.
11: Visit today, Yadopur Road, Saraya Ward No. 1, Shambhu Path, Saraswati Talkies ke paas, Gopalganj.
12: Call now 775-994-9440 or 775-994-9441.
15: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
16: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
15: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
16: बिल्कुल माया क्लासिकल में पीडीएफ, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
17: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रिजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पर ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हों सही से ही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
18: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जनगणना में लापरवाही बरतने वाले शिक्षक को किया गया निलंबित। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी जोरों पर, आज जिला जज ने की प्रेस वार्ता। अलग अलग मामलों में गिरफ्तार 36 लोगों को भेजा गया जेल। हत्या के प्रयास में भी 2 जगहों से 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। गैस को लेकर जिला पदाधिकारी ने दी जानकारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। पूरे जिले में जनगणना का अभियान जोर शोर से चल रहा है। जनगणना में तमाम पदाधिकारियों और सरकारी कर्मियों की तैनाती की गई है, उनकी जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं और तय समय पर जनगणना के कार्यों को पूरा करने की दिशा में जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में लगातार काम चल रहा है। इसी कड़ी में कुछ सरकारी कर्मी जनगणना कार्य में लापरवाही भी बरत रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने इन सभी कर्मियों से सो कॉज नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की है। तो वहीं आज एक शिक्षक को निलंबित भी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर प्रखंड के हमीदपुर पंचायत में तैनात शिक्षक मनीष कुमार को जनगणना कार्य में लापरवाही पर जिला पदाधिकारी ने निलंबित कर दिया। इसको लेकर आज जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया।
19: कर जवाब मांगा गया है।
20: हम लोग यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसमें जो लोग भी लापरवाही बरतेंगे उस पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश डीएम सर से ही प्राप्त हुआ है। इसी कड़ी में आज एक शिक्षक ने सर को भी मैसेज किया था और हमारे यहाँ ही फोन करके वो लोग लगातार वो बोल रहे थे कि उन्हें जनगणना कार्य से मुक्त किया जाए क्योंकि इससे उन पे अत्यधिक प्रेशर पड़ रहा है, जबकि यह सरकार का इतना महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें सभी को जो लोग भी इन्वॉल्व है उनको लगातार करना है और इसमें कोई ज्यादा कार्य करना नहीं है। आपको विद्यालय अवधि के बाद मुश्किल से एक दिन में 4 से 5 घर की हाउस लिस्टिंग करनी है, तो ये इसको देखते हुए ये प्रथम दृष्टया उन पे जो है स्वेच्छाचारिता और कार्य प्रति लापरवाही का आरोप सिद्ध हो रहा है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने उनको निलंबित करके अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।
19: क्या नाम है शिक्षक का?
20: शिक्षक ये मनीष कुमार है, जो प्राथमिक विद्यालय हमीदपुर SC टोला बैकुंठपुर के विशिष्ट शिक्षक।
18: 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है और इसमें अधिक से अधिक वादों को निष्पादित करने के लिए जिला जज गीता गुप्ता के नेतृत्व में लगातार अभियान चल रहा है। प्रत्येक दिन राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए बैठकें की जा रही हैं आज भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत को अधिक से अधिक प्रभावशाली और जन उपयोगी बनाने के लिए जिला जज ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने तमाम पत्रकारों के माध्यम से जनता से भी अपील किया है कि लोग राष्ट्रीय लोक अदालत का इस्तेमाल कर अपने वादों को निष्पादित करने के लिए प्रयास करें। इसके लिए सुलहनीय वादों को आप राष्ट्रीय लोक अदालत में समाप्त करवा सकते हैं। सभी पक्षकारों को भी नोटिस भेजी जा रही है। प्री सिटिंग कर पक्षकारों को उनके मामलों के संदर्भ में आवश्यक जानकारियां भी दी जा रही हैं। इसके लिए सभी बेंचों का गठन कर लिया गया है और 9 मई को सुबह 10 बजे से व्यवहार न्यायालय के नए भवन परिसर के ग्राउंड फ्लोर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें तमाम न्यायाधीश गण और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पदाधिकारी और अधिवक्ता गण पूरे जोश खरोश के साथ काम कर रहे हैं ताकि इस बार अधिक से अधिक वादों का निष्पादन हो सके। आज जिला जज ने तमाम पत्रकारों के माध्यम से भी जनता से अपील किया है कि आप अपने वादों का निष्पादन करवाएं। सुलह समझौता के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निष्पादन होता है। यहाँ ना तो किसी की जीत होती है ना किसी की हार होती है। दोनों पक्ष को बिठाकर दोनों पक्षों के बातों को सुनने के बाद सुलह समझौता के आधार पर वादों का निष्पादन करा दिया जाता है। और राष्ट्रीय लोक अदालत में जिन वादों का निष्पादन होता है उसमें कहीं अपील भी नहीं होता है, वह मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में ही समाप्त हो जाता है। इसलिए लोग इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें और अपने वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादित करवा लें। इसके लिए आप अपने संबंधित न्यायालय में या जिला विधिक सेवा प्राधिकार के ऑफिस में या राष्ट्रीय लोक अदालत के ऑफिस में भी जाकर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में 24 घंटों के अंदर 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन सभी अभियुक्तों को आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बताया जा रहा है कि इसमें कुल 36 गिरफ्तारियों में हत्या के प्रयास में और हत्याकांड के भी मामलों में गिरफ्तारी हुई है। साथ ही आईटी एक्ट और SC ST एक्ट में भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। शराब के साथ भी 7 लोगों को पकड़ा गया है और शराब के नशे में भी 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा अलग अलग मामलों में अदालत द्वारा जारी वारंट के आधार पर भी कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इधर अलग अलग थाना क्षेत्रों से हत्या के प्रयास में भी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि उंचका गांव थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे आरोपी मिथिलेश राय और मुकेश राय को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों स्वर्गीय पारस राय के पुत्र हैं और डोडापुर थाना उंचका गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर विधिवत इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साथ ही मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त अजय महतो पिता स्वर्गीय सी पर्सन महतो तथा बीरेश महतो पिता जितेंद्र महतो, ये दोनों डुमरिया के रहने वाले हैं, थाना मोहम्मदपुर के ही निवासी हैं। इन्हें भी पुलिस ने हत्या के प्रयास में गिरफ्तार किया था। आज इन दोनों को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि अलग अलग कांडों में 176 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब को भी पुलिस ने जब्त किया है। साथ ही वाहन जांच अभियान चलाकर भी 2,17,000 से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में अलग अलग वाहन चालकों से भी वसूल की गई है। जिले में गैस की उपलब्धता को लेकर बिहार सरकार के निर्देश पर प्रत्येक दिन जिला प्रशासन प्रेस वार्ता कर गैस की उपलब्धता के संदर्भ में जानकारी देता है। आज भी जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने गैस की उपलब्धता को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि जिले में IOCL के 26 विक्रेता हैं और इनके स्टॉक में 14,715 गैस सिलेंडर हैं। BPCL के 8 थोक विक्रेता हैं और इनके पास 5,443 गैस सिलेंडर हैं। तो वहीं HPCL के कुल 12 विक्रेता हैं और इनके पास 5,918 गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। इस प्रकार जिले के तीनों एजेंसियों को मिलाकर कुल 26,076 गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध और तनावपूर्ण स्थिति के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति प्रभावित होने से समस्या हुई है। जिला प्रशासन लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। जगह जगह ब्लैक कारोबारियों के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को भी लेकर उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी 95 पेट्रोल पंपों पर फिलहाल पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता है। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन लगातार लोगों में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पदाधिकारियों की तैनाती की है, जो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और छापेमारी कर रहे हैं ताकि जनता को निर्बाध रूप से गैस और डीजल पेट्रोल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इधर हथुआ नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 में जल जमाव से लोग काफी परेशान हैं। बताया जा रहा है कि इसमें जब मीडिया में खबरें चलनी शुरू हुई तो उनको देखकर आज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जल जमाव से जूझ रही जनता की समस्याओं पर निरीक्षण करते हुए जल्द ही उनके समस्या से उन्हें निजात दिलाने का आश्वासन दिया है, जिसको लेकर अब स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है कि शायद नगर परिषद अब उन्हें जल जमाव से मुक्ति दिला सकता है। इधर मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने शराब के मामले में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इसमें पहले से शराब तस्करी के मामले में पुलिस ने छापेमारी करते हुए प्राथमिकी अभियुक्त त्रिपुरारी महतो को गिरफ्तार किया। यह बनका महतो का पुत्र है और महारानी उग्रसेन थाना मोहम्मदपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके अलावा एक और मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त सुदेश नट को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह 13 नट का पुत्र है। साथ ही बच्चन नट को भी गिरफ्तार किया गया। यह जमुना नट का पुत्र बताया जा रहा है। ये दोनों रामचंद्रपुर थाना मोहम्मदपुर के निवासी हैं। इन पर भी शराब तस्करी का आरोप है। इन तीनों को आज पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने आज अपने कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुना। बताया जा रहा है कि इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए आवेदकों ने पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित होकर अपने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। सभी समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई करने का पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया है। बताया जा रहा है कि प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जन सुनवाई की जा रही है, जिससे आम जनता अपने शिकायतों को पुलिस अधीक्षक के समक्ष रख रहे हैं। इधर उचका गांव थाना की पुलिस ने 169 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसकी मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने लूसी गांव के पास छापेमारी की और गुप्त सूचना के आधार पर 156 लीटर देशी शराब बरामद की गई। साथ ही वाहन जांच के दौरान ग्राम सांखे बाजार के पास एक मोटरसाइकिल से 13 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ अभियुक्त सुकुल कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह लच्छी खरिया थाना गोपाल के धर्मनाथ राम का पुत्र बताया जा रहा है। इसकी मोटरसाइकिल को जब्त कर और इसके शराब को भी जब्त करने के बाद इसे उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का सद्भाव यात्रा के दौरान गोपालगंज में भी कार्यक्रम आयोजित होना है। इसको लेकर पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता स्वागत की जोरदार तैयारियों में जुट गए हैं। इसके संदर्भ में आज जदयू पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने जानकारी दी। उन्होंने जिले के तमाम जदयू पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को सूचित किया है कि 10/5/2026 को सद्भाव यात्रा प्रस्तावित है, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का आगमन होगा। इस कार्यक्रम को लेकर 6 तारीख को सुबह 11:30 बजे गोपालगंज अतिथि गृह में पार्टी के नेताओं की एक बैठक भी होगी, जिसमें निशांत कुमार के स्वागत की तैयारियों को लेकर आवश्यक रणनीति बनाई जाएगी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जनगणना में लापरवाही बरतने वाले शिक्षक को किया गया निलंबित। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी जोरों पर, आज जिला जज ने की प्रेस वार्ता। अलग अलग मामलों में गिरफ्तार 36 लोगों को भेजा गया जेल। हत्या के प्रयास में भी 2 जगहों से 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। गैस को लेकर जिला पदाधिकारी ने दी जानकारी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
21: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
0: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
21: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
21: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
22: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
21: कहाँ पर?
22: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल छवही खास गोपालगंज,
21: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
22: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है।
21: तो देर ना करें, ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
22: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास NH 27 गोपालगंज, कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569650।
23: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
24: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
23: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
25: प्रसाद क्लिनिक,
26: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
25: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
26: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
27: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
28: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
29: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में?
30: क्यों, क्या हुआ है?
29: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
30: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
29: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
30: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
31: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
32: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
31: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
32: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
31: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान लिया।
32: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
33: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
31: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।
34: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
35: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
0: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
21: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
0: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
21: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष
34: विशेषज्ञों द्वारा।
35: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
34: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
35: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
34: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
1: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया अपेंडिस वंध्याकरण प्रोस्टेट पीत की थैली किडनी की पथरी पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे समय 9:29 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो थोड़ा सा समझदारी के साथ ओल्ड इज गोल्ड या 90s के गाने के फरमाइश करना है, ताकि आपकी फरमाइश हम आपको सुना सकें। ऐसा ना हो कि आप नए गाने के फरमाइश करें और हम उसको ना सुनाएं और आप इंतज़ार करते करते कार्यक्रम की समाप्ति तक इंतज़ार करते ही रह जाएं। तो आप लोग पुराने गाने का फरमाइश करेंगे, आप लोगों से ये विनती है। कुछ मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं और आप अपना भी कार्यक्रम शुरू करें मैसेज टाइप करने का। और पहला मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर, हम सफरोज अली आखिल टोला से और हमको गाना सुनना है और गाने के फरमाइश कौन से करते हैं। और ओह काफ़ी प्यारे गाने का फरमाइश करते हैं, कहो ना प्यार है उदित नारायण की आवाज़ में। तो बिल्कुल आपके फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है कुछ, तो और भी मैसेज देखा जाए। आगे मैसेज में लिखा गया है कि हेलो सर नमस्कार, मुझे गाना सुनना है। और इस मैसेज को पहुंचाते हैं नीतीश कुमार बस्त्रा, राजा लालगंज, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सर नमस्कार, राधे राधे सर जी, मैं सुजीत कुमार बस्त्रा, राजा लालगंज से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में सुजीत जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो जी नमस्ते, सॉन्ग नहीं ये लगता दिल तेरे बिना, निशा शुक्लवा से। और आज कहते हैं कि सॉन्ग बदलने को मत कहिएगा, रोज़ रोज़ बदलते हैं। कोई बात नहीं, इस गाने को हम सुनाएंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम सुनो भैया, क्या हाल है, मैं मुस्कान गोपालगंज से। तो बिल्कुल बढ़िया है और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, कैसे हैं सर, सॉन्ग ओ शाइबा। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, अश्रिया एंड मनीषा फ्रॉम अमो मौजम से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सर, समीर आलम जंगलिया से। बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, क्या हाल है समीर आलम। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सनो भैया कैसे हैं, आशा चौहान विलेज सराफरा परसौनी से। और कहती हैं सभी दोस्तों को पूछती हैं सभी दोस्त कैसे हैं। हेलो, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि बजा दीजिएगा सुनो भैया। बिल्कुल लेके करके फरमाइश पूरी करेंगे, अभी तो फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए ही नहीं है और आपकी फरमाइश तो प्ले करने की कोशिश रहेगा। और इस मैसेज को करते हैं बिपुल सिंह गोपालगंज से, तो बने रहे हमारे साथ, आपकी फरमाइश प्ले होगी। फिलहाल हम आखिल टोला से गाने का फरमाइश करने वाले हमारे श्रोतागण सफरोज अली हैं और उनका पहला मैसेज पहुंचा हुआ है, तो इनके गाने को प्ले करते हैं और शुरू करते हैं कहो ना प्यार है उदित नारायण जी की आवाज़ में।

ये प्यारा सॉन्ग सुन रहे हैं हम सभी अलका याग्निक एंड उदित नारायण जी की आवाज में, कहो ना प्यार। टाइटल ट्रैक बिल्कुल, यदि आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, इसकी इसमें अपने फरमाइश सुन सकते हैं। बस आप लोग थोड़ा सा समझदारी जताते हुए पुराने गाने का फरमाइश करेंगे, 90s या ओल्ड इज गोल्ड। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और मैसेज पहुँचाते हैं हमारे श्रोतागण बस्त्रा राजा लालगंज उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने गाने का फरमाइश किए हुए हैं पवन सिंह की आवाज़ में, और गाने का बोल देते हैं, प्यारे में नहीं खी गोरी हम बेवफा। तो चलिए आपके गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी। और यहाँ पे अभी गाने को लेकर मैसेज भी पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। और आगे मैसेज कई रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट करने वाले सभी श्रोतागण थोड़ा सा सब्र करें कि करके सबकी फरमाइश हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी अगले फरमाइश पवन सिंह की आवाज़ में।

0: दामाद जी कुछ कहला ना था
1: कमाल के
0: मनोज बाबू के साथ ही रिश्ता से खुश तो बाड़ू ना।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
8: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
7: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
7: संपर्क 99-393-65-930।
8: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
6: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
7: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
6: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
7: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स, कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27, बंजारी, गोपालगंज।
7: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजी 90.4 एफएम पे शो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो फरमा सकते हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और गाने का फरमाइश पहुंचा हुआ है। निशा शुक्लवा से इस गाने का फरमाइश करती हैं, नहीं यो लगता दिल तेरे बिना। तो इनके गाने हम प्ले करेंगे और आगे कुछ मैसेज पहुंचा हुआ है तो देखा जाए। भोला शाह मटनिया से कहते हैं कि मुझे गाना सुनना है, हुस्न हाजिर है मोहब्बत के सजा पाने को। ओहो, बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में भोला शाह जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, शिव सागर जी जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि छोटी छोटी बात पर नाराज मत हुआ करो, गलती हो जाए तो माफ़ कर दिया करो। अरे नाराज तब होना जब रिश्ता तो तोड़ देंगे, और ऐसा तब होगा जब हम दुनिया छोड़ देंगे। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। सुनो भैया और क्या हाल है। मैं शिव सागर दीवाना जम्मू एंड कश्मीर से और मुझे सॉन्ग सुनना है। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश से तो प्ले करने की कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और मैसेज करते हैं शमीर आलम, मस्त बिंदास झकास। तो बिल्कुल आपका झकास है तो हम भी आप सभी के साथ ही हैं झकास। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि अभी मैसेज पहुंचा हुआ है। मैसेज पहुंचाने वाले लिखते हैं कि यूं ही पलके बिछा कर तेरा इंतज़ार करते हैं, ये वो गुनाह है जो हम बार बार करते हैं। जलकर हसरत की राह पर चिराग हम सुबह और शाम तेरे मिलने का इंतज़ार करते हैं। सुनो भाई नमस्कार, आप कैसे हैं, हम भी जुड़ गए हैं। हाजिर लगा दीजिए, बिल्कुल बढ़िया आप सभी के साथ। और इस मैसेज को करते हैं दिलीप राम जी और आगे मैसेज और अगले गाने के फरमाइश यहाँ पे पहुँचा हुआ है। तो यहाँ पे मैसेज करती हैं शबीना खातून फ्रॉम दुलुलिया से और कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या खैरियत है। बिल्कुल बढ़िया मस्त। कहती हैं कि आज मुझे सॉन्ग सुनना है एक, आएगा मज़ा अब बरसाते का। तो बिल्कुल तो मज़ा तो आ ही रहा है और मज़ा के साथ साथ सजा भी आ रहा है, आंधी तूफान जब चल रही है तो। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सुनो भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार, मुझे गाना सुनना है। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और एक मैसेज आपके शामिल कर दिए हैं, दूसरे भी मैसेज शामिल कर दिए हैं। गाने का फरमाइश रहा तो भी पूरा करने की कोशिश रहेगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी, नहीं हो लगता दिल तेरे बिना।

कमाल के सॉन्ग रेडियो रेमझिम 90.4 FM पे काफ़ी प्यारा सुन रहे थे हम सभी। और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है गाने के फरमाइश और कह रहे हैं कि मेरा गाना कब बजेगा। तो बिल्कुल आपके गाने बजेंगे और वो भी अभी। इस मैसेज को करने वाले हमारे श्रोतागण हैं, इनका नाम है सुजीत कुमार बरसतारा राजा लालगंज मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं और गाने की फरमाइश करते हैं, तेरी बेवफाई ओ यारा जान पर मेरी बनाई। और आगे कुछ मैसेज देख लेते हैं फिर आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक्स सॉन्ग प्ले करने के लिए। और बिल्कुल हम ये नहीं चाहते हैं कि आप लोगों की फरमाइश रुके। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया कि सर ये गलत बात है, न्यू गाना नहीं बजता है इस शो में। और हम तो हर रोज़ कहते ही हैं कि आप लोग 90s के गाने के फरमाइश करें या ओल्ड इज़ गोल्ड के फरमाइश करें, फिर भी आप लोग तो मानते ही नहीं हैं और कहते हैं कि ये गाना हमारा सुना दीजिए। अब इन्हीं को देखिए, गाने के फरमाइश करते हैं के साथ साथ कहते हैं कि गाने को चेंज करने को मत बोलिएगा, तब हम इसमें कर ही क्या सकते हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मैं रंजीत शर्मा, माय लवली वाइफ सीमा शर्मा विद माय लवली बेबी दिव्या शर्मा, हम लोगों को एक सॉन्ग सुना दीजिए प्लीज़। तो आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में और हाबाद सॉन्ग की फरमाइश तो होती है तो पूरा करने की कोशिश रहेगा, वैसे तो समय बहुत कम है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, ओह तो चलिए आगे बढ़ते हुए अगले गाने को फरमाइश को हम प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश।

0: कमाल के शांग काफ़ी प्यारा रेडियो एमजीएम 94.4 FM पे सुन रहे हैं आप सब और सोशल एसएमएस फरमाइश का। और समय 10:01 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि अस्सलाम वालेकुम सुनो भैया क्या हाल है, मैं मुस्कान गोपालगंज से और मुझे सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग का बोल दिया गया है, गजब के रोग जवानी में दे गई लंखिया, और सुनाना चाहते हैं आपको और सुनने वाले सभी रेडियो दोस्तों को प्लीज़ सुना दीजिए। तो चलिए आपके भी गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने। मुस्कान हम सभी रेडियो एमजीएम 94.4 FM पे एंजॉय करते हैं।
1: के मौसम बदल ना सके, हाल दिल के संभाले संभल ना सके, रोग ऐसन भैलबा बताई का हम, मन के महफिल से मस्ती निकल ना सके।

में राखब दिल के अरमान बना के, तोहके दिल में राखब दिल के अरमान बना के, अरे जान जबले रही कसम से तोहके जान बना के।

4FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश काफी प्यारा सॉन्ग मनोज तिवारी जी की आवाज में सुन रहे थे अभी हम सभी और गजब के रोग जवानी में दे गई लखिया और आगे मिसेस पहुंचा हुआ लिखा गया कि थैंक यू सो मच सनविया आपको धन्यवाद है रेडियो रेमझिम सुनने के लिए। और आगे मिसेज पहुंचा हुआ है और आगे मिसेज में लिखा गया है कि नमस्कार सुनो भाई, सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार बोलिएगा और मैं राजेश प्रसाद। तो बिल्कुल राजेश जी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर हमारे यहाँ बारिश हो रही है बस्तरा राजा लालगंज उत्तर प्रदेश में और इधर भी मौसम थोड़ा बारिश वाला बना हुआ है और पता ना कब बारिश आ जाए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करेंगे और गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है और गाने का बोल दिया गया है ओ शाइबा डेडिकेट सभी को और इस मैसेज को करती हैं सरिया फ्रॉम अमो मौजम से। तो चलिए इनके फरमाइश हम सुनते हैं, एंजॉय करते हैं हम सभी रेडियो 94.4 FM पे।

रेडियम छे 94 FM बेस प्यारे से शंकु सुन रहे थे हम सभी और शो चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यहाँ पे समय जो देखे तो 10:14 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में, और आगे देखे तो कई सारे मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए हैं और गाने के फरमाइश भी हैं। तो बहुत सारे तो नहीं प्ले कर सकते हैं, अंतिम गाने प्ले करने की मौका है तो अंतिम गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे और आगे देखा जाए कि इनका मैसेज है और जो पहले से मैसेज पहुँचा हुआ है। और आगे मैसेज देखा जाए तो यहाँ पे अगले गाने के फरमाइश और अगली गाने के फरमाइश किन का है, इसलिए अगली गाने के फरमाइश हम भोला शाह जी की देखते हैं और गाने के फरमाइश करते हैं। कहते हैं कि मुझे गाना सुनना है, हुस्न हाजिर है मोहब्बत के सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो चलिए इन्हीं के गाने को प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। और जो भी श्रोतागण छूट जा रहे हैं नाराज नहीं होना है, थोड़ा सा सब्र करना है और समय की कमी है, और जब समय की समाप्ति हो जाती है तो इसमें हम कुछ कर नहीं पाते हैं। फिलहाल अंतिम गाने प्ले करने का मौका रहता है तो प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते ही हैं। सो आज भी प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो आप सभी सुनते रहें रेडियो एमसीएम 94 FM, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा है। उन्होंने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में जापान की आर्थिक सुरक्षा मामलों की मंत्री किमी ओनोडा से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के महत्व पर सार्थक बातचीत की। भारतीय नौसेना का जहाज INS सुनैना म्यांमा के यांगोन बंदरगाह पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये तैनाती और बंदरगाह पर आगमन भारत के महासागर विजन का हिस्सा है। ये तैनाती हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोगात्मक समुद्री गतिविधियों में भारतीय नौसेना की भूमिका को भी दर्शाता है। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल और समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों के वेतन में भारी वृद्धि को मंजूरी दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में विभिन्न विषयों में कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले लगभग 1130 वोकेशनल शिक्षकों को अब प्रति माह 38,100 रूपये मिलेंगे। भारत ने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में इतिहास रचते हुए T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बना था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Union Cabinet has approved the Mission for Cotton Productivity, Kapas Kranti, with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the mission aligns with the government's 5F vision. Farm to fiber, to factory, to fashion, to foreign, and focuses on enhancing cotton productivity.
1: 5,660 crore rupees ka.
2: This project is worth 5,660 crore rupees and consists of three components. The first component is research. The second is enhancing production technologies. And the third is encouraging farmers towards new age fibers. This reflects the Prime Minister's 5F vision, creating fiber from the farm, moving from fiber to the factory, from factory to fashion, and maintaining the entire cotton supply chain from fashion to foreign shores.
1: Foreign shores tak cotton ka puri supply chain ko maintain karna.
2: The Union Cabinet has also approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0. Under the scheme, a 100% credit guarantee will be provided for MSMEs, while a 90% guarantee will be extended to non-MSMEs and the airline sector. The Union Cabinet has also approved two more semiconductor projects under the India Semiconductor Mission. These include the country's first commercial mini micro LED display facility based on gallium nitride technology, along with a semiconductor packaging facility. Mr. Vaishnaw said the approved proposals will establish semiconductor manufacturing units in Gujarat with a cumulative investment of around 3,936 crore rupees. The Union Cabinet today approved a proposal to introduce the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in Parliament. Mr. Vaishnaw said the bill seeks to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 to increase the sanctioned strength of judges in the Supreme Court by 4, from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, also approved three multi-tracking railway projects with a total cost of 23,437 crore rupees. The CCEA has approved the development of a state-of-the-art ship repair facility at Varinar, Gujarat, marking a major expansion of the national ship repair ecosystem. Following the BJP's sweeping victory in the West Bengal Assembly elections, the new cabinet members are likely to be sworn in on the 9th of this month, the birth anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore. In Tamil Nadu, actor turned politician C. Joseph Vijay's Tamilaga Vetri Kalagam TVK has emerged as the single largest party in the state, winning 108 seats. Following the party's strong electoral debut, newly elected TVK legislators have formally elected Mr. Vijay as their leader in legislative party meeting at the party headquarters in Panayur near Chennai. Meanwhile, outgoing Chief Minister M.K. Stalin has submitted his resignation to the governor, which has been accepted. The Election Commission has categorically dismissed as baseless and false the allegations made by Trinamool Congress candidate and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee regarding the vote counting in Bhavanipur Assembly constituency. In a statement issued by the District Election Officer of South Kolkata, it was clarified that the entire counting process was conducted strictly in line with the Commission's rules and regulations. Prime Minister Narendra Modi has strongly condemned the attacks on UAE's Fujairah that resulted in injuries to three Indian nationals. In a social media post, Mr. Modi stated that targeting civilians and infrastructure is unacceptable. He asserted that India stands in firm solidarity with the UAE and reiterates its support for peaceful resolution of all issues through dialogue and diplomacy. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today said that development cooperation remains a key pillar of the partnership between India and Jamaica. Addressing the media after his meeting with his Jamaican Foreign Minister Carmina Johnson-Smith and other cabinet members, India has retained its position at the top of the ICC Men's T20 ranking, showcasing their dominance in the cricket world. And that is the end of this news bulletin.
3: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: जी मैम, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायर MP से।
1: जी जी, क्या हाल चाल है सुनील जी?
2: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे मैम शो का इंतजार करते हुए मैम, तो टाइम हो गया तो हम सोचे चलो अभी फोन लगाते हैं, फोन भी लग गया मैम।
1: चलिए बढ़िया है। गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
2: जी हमको सुनवा दीजिएगा फिल्म जीत से गाने के बोले तू धरती में जाए जहाँ पी रहे तेरी खुशबू से लूंगा। और सुनवाएंगे किसने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: ओके, तो प्ले करेगा ना?
2: ओके मैम।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सो मैं कॉल किया।

0: हाँ अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: मैं मोहम्मद यूसुफ सिपाही डाला अपना मेडिकल हॉल से बोल रहा हूँ
1: जी। कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया है, अभी फोन लगाए थे तो कट गया, नेटवर्क नहीं था।
1: जी जी, बारिश हो रही है ना शायद इसकी वजह से नेटवर्क सही नहीं है।
0: यहाँ पर भी सिपाही डाला में बहुत जोरों से बारिश हो रही है, 2 घंटा हो गया लगभग।
1: हाँ यहाँ भी वही हाल है।
0: हाँ मौसम तो बहुत खराब है, अब क्या कीजिएगा,
1: क्या करेंगे, काम तो करना ही है।
0: यही है कि गेहूँ के दौरी हो गया।
1: हाँ हाँ हो गया, लेकिन बारिश हो गया तो खेत के लिए भी सही है। हाल हो जाएगा।
0: हाँ हाल हो जाएगा, बिचड़ा वगैरह गिरेगा गेहूँ का, धान का।
1: हाँ जिसको गिराना होगा वो गिरा देगा, सही रहेगा उसके लिए।
0: तब हम यही कहेंगे कि आप हमको इसी बरसात में गाना सुनवा दीजिए।
1: जी बता दीजिए नाम।
0: ये कह रहे हैं कि बेमौसम बरसात हुई, अभी बरसात का मौसम नहीं है।
1: जी जी,
0: बेमौसम बरसात हुई है, कुछ तो ऐसी बात हुई है, अपना सब हम भूल गए जब से सोनी जी से बात हुई है। हाँ तो जारे जारे उतारी बदरिया,
1: आवाज कट गया, एक बार और बताइए।
0: जारे जारे वो कारी बदरिया
1: जी,
0: इसी गाने को सुनवाइएगा
1: और डेडिकेट भी करिएगा।
0: हाँ अपना मेडिकल हॉल के सभी स्टाफ और खासकर कन्हैया जी जो फौजी से रिटायर किए हैं उनको सुनवाइए।
1: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी।
0: हाँ ठीक
1: ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सो मैं कॉल के जी।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: मैं अहमद अली सर, आवाज नंबर 1 है।
1: जी का हाल चल बा अहमद जी?
2: ठीक बस जी, अपन बताई बारिश में कैसा लागता?
1: अरे का बताई कैसा लागता, जैसे अंदर पाँव धैनी तले बारिश तेज हो गए, खुला लाटो 10 मिनट खातिर वही बीच में आईनी है।
2: भाग मनाई की पहुँच गई नहीं है न तो आइयो ना कोई दिन
1: न। हमको तो ऐसा ही लग रहा है की हम आज नहीं जा पाए, क्या की निकले के टाइम में ही बारिश आ गया।
2: हमारा नंबर तो 2 बार लागल है लेकिन उठनी है ना।
1: अरे जैसे आके चालू कर ले रही अभी बीच में आई रही, फोन में चार्जो ना रहे, लाइट ना रहे तो चार्जो ना भई रहे।
2: हम कहनी हमारा पर अपना जुलूम का है होता पूछे मोमेंट से।
1: ना ना जुलूम नहीं होते, ना चार्ज ना रहे और बात करती तो तुरंत मोबाइल बैठ जाये।
2: कई अफसरी के मोबाइल से फिर लगनी, हम अपना मोबाइल से लगावत लगावत है
1: ना
2: लागल है। 126 बार डायल कर ले बनी।
1: अच्छा अच्छा चले लागल। बता दी
2: आज गाना तो सुनवा दी नजायज फिल्म से बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में। सुनाने के बाद सबसे पहले कमरान रशीद के, राघव जी के, दिलीप भाई के और जो भी रेडियो रिमझिम जहाँ से भी सुना था सब करा के। आज कहिया बाजी गनवा? गनवा कब बाजी? आज की का?
1: आज बाजी, आज शाम के 5 से 7 के बीच में आई।
2: ठीक बा
1: जी,
2: चलिए शुक्रिया
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जुम्मा मुबारक सब करा के।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
4: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
3: भागे भागे फिरते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार

0: को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: नमस्कार सोनी जी।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: धर्मेंद्र तिवारी बोल रहे हैं
2: जी। कैसे हैं धर्मेंद्र जी?
1: भैया
2: तो क्या हो रहा था अभी?
1: अभी तो घर पर आए हैं, बारिश हो रही है, घर में कुछ काम है वही कर रहे थे।
2: तो गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: शादी वाला कोई गाना सुनवा दीजिए।
2: शादी वाला और सुनवाना भी है?
1: रेडियो रिमझिम सोता सुनेंगे सारे आदमी।
2: ओके, चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी
1: जी। नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल किया।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: जी, कुमारी गोपालगंज से।
0: जी, कैसे हैं खुशी जी?
1: अच्छे हैं, अपना बताइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रहा था अभी?
1: अभी कुछ नहीं, बारिश हो रहा है, बैठे हैं।
0: तो गाना कौन सा सुनना है खुशी जी आपको?
1: गाना बहुत सका है।
0: कौन सा गाना?
1: भोजपुरी गाना बहुत सका है
0: जी। बिल्कुल बच सकता है भोजपुरी गाना।
1: लाए तो माई मारे लगी हो।
0: अच्छा, प्यार के बुखार उतारे लगी हो, ये वाला गाना ना?
1: हाँ, यही।
0: अच्छा, और सुनाना भी है?
1: हाँ, सिरजी कुमारी, शिवम कुमार, सलोनी कुमारी को और आपको, जितने रेडियो सुने सब।
0: ओके, चलिए तो प्ले करे गाना आपकी।
1: हाँ, कर दीजिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल के।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
3: मैं अहमद अली सारे आवाज नंबर 1 है।
2: ठीक, हाल चाल बा अहमद जी?
3: ठीक बा जी, अपन बताइए बारिश में कैसा लागता?
2: अरे का बताए कैसा लागता, जैसे अंदर पाँव धनी तले बारिश तेज हो गयी, खुला मिनट खातिर वही बीच में आईनी है।
3: भाग मनाई की पहुँच गए नहीं है, आइयो ना कोई दिन
2: न। हमको तो ऐसा ही लग रहा है की हम आज नहीं जा पाए, क्या की निकले के टाइम में ही बारिश आ गया।
3: हमारा नंबर तो 2 बार लागल है लेकिन उठानी है ना।
2: अरे जैसे आके चालू कर ले रही अभी बीच में आई रही, फोनवा में चार्जो ना रहे, लाइट ना रहे तो चार्जो ना भई रहे।
3: हम कहनी हमारा पर अपना जुलूम का है होता पूछे मम्मी से।
2: ना जुलूम नहीं था, होते ना चार्ज ना रहे और बात करती तो तुरंत मोबाइल बैठ जाये।
3: कई अफसरी के मोबाइल से फिर लगनी, हम अपना मोबाइल से लगावत लगावत है
2: ना
3: लागल है। 126 बार डायल कर बनी।
2: अच्छा अच्छा, चले लागल बता दी।
3: आज गाना तो सुनवा दी नजायज फिल्म से बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में। सुनावे के बाद सबसे पहले कमरान रशीद के, राघो जी के, दिलीप भाई के और जे भी रेडियो रिमझिम जहाँ से भी सुना था सब करा के। आज कहिया बाजी गानवा? गानवा कब बाजी? आज की का?
2: आज बाजी, आज शाम के 5 से 7 के बीच में आई।
3: ठीक बा
2: जी,
3: चलिए शुक्रिया
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जुम्मा मुबारक सब करा के।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
1: Hello, hello, hello, hello, hello.
3: Bhage bhage phirte hain.
4: Break ke baad aap sabhi ka ek baar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
4: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: हाँ संग जी, हमारा संगठन होता का
4: जी जी का होता थे बताई
5: फोन था के कट गया है नेटवर्क
4: ना जी सबके संग होता है, शायद बारिश के मौसम बनो बारिश काफी तेज आवत है तो मैं नेटवर्क था फंसा था टे।
5: हम जन के हमारे संग होता कभी घड़ी
4: ना ना आज काफी भयानक वाला बारिश होता, आज 2 घंटा हो गए अभी बारिश हो।
5: हम नहीं कहता अभी नीचे हो
4: ना, यहाँ तो होता बारिश खुल रहा था महीने जैसे अंदर पैर रखनी फिर बारिश शुरू हो गए। राकेश सर से बात करता नहीं ना।
5: हाँ जी हाँ जी
4: जी तो बताए जी
5: तब बढ़िया बा। हमने कहा 29 तारीख के खूब भयंकर बारिश भइल है, आंधी पानी होई तरी
4: ओ दिन तेहू जी भइ रहे शाम के बारिश भइ रहे।
5: हाँ शाम के पूरा टेंट समझाने अपना लोग के लागल रहे में उधिया गई रहे
4: सब लेके चल गए।
5: हमने के पूरी खाई बैठल है यार मतलब शाम के ही अभी मतलब 2-4 कवर तक खाई नहीं रखा तब तक पतल उतल में उधिया
4: बोल की ना खाए दे आज
5: ना खाए के मिल दिन
4: अब सब उदिया ले गए तो कैसे आदमी खाए।
5: हाँ पूरा टेंट समय में पानी लागे रहे 1 फीट तक पानी लागे रहे तो मैं आदमी कहाँ बैठे।

0: 24 घंटा तू उनके संग रहो, हमारा संग कब रहो।
1: मैं तो 24 घंटा में 23 घंटा नाथ रखी।
0: हाँ तू अब बाबा जी बार बार हमारे कहे चले जाओ,
1: तब तो लड़ाई होके के बात बटे।
0: हाँ वही से लड़ाई हो जाता है। बुधे के दिन चल जाए खदला बने की तू हमारा संग भाई मत रहा।
1: चली बढ़िया के ले बनी ऐसा बात
0: बता। हाँ कहे कती बनी की हमारा संग रहो, हम अपन जहाँ बनी चाहे ठीक बनी, हमारा से जब जरूरत पड़े तब हमारा से आके मिल लीह।
1: जब काम पड़े तब मिल लीह। ठीक बा।
0: हाँ काम पड़ी तो मिल ली है, काम पड़ी के बिना मतलब कि हमारा संग रहो भी ठीक नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: हाँ उनको मेरा भी कहना है।
1: चलिए ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल करने।
2: काहे आखिर काहे रोवलू जब हंसावे के ना रहे, काहे गुनगुनौलू जब गावे के ना रहे। आज आंसू पोछा तनी एगो प्रश्न बन के, काहे कैलू मोहब्बत जब निभावे के ना रहे।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं hello,
1: hello, hello, hello, hello, hello.
3: भागे भागे फिरते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो मैडम, नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: जी, मैं मन्नान बोल रहा हूँ कपूरथला से।
4: जी, कैसे हैं मन्नान जी?
5: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आज टाइम मिल गया है फोन करने के लिए। नाश्ता पानी हो गया?
4: जी जी, बिल्कुल हो गया है।
5: हो गया कि हो रहा?
4: नहीं नहीं, हो गया है
5: ना। हमको तो लगता है कि हो रहा है।
4: ना ना, आज तो सुबह में ही हो गया है।
5: तो गाना सुना दीजिए मैडम आज।
4: जी,
5: बन के दुल्हनिया मैं चली तेरे द्वार।
4: जी
5: हाँ, तो गाना हमको वही सुनना था।
4: और सुनवाना भी है?
5: और सुनवाना है क्या है, वही जो आसाम वाले लोग आए हैं तो उन लोग को सुनाना है। जैसे बेनजीर नाम है, बाबुल नाम है ना, आलिया नाम है ना, इन लोगों को सुनवाना है और आपको सुनवाना है। बाकी रेडियो में जितने रिमझिम के साथ प्रेमी है लोग, वो लोग सुनेंगे।
4: तो प्ले करे गाना?
5: बिल्कुल, शौक से प्ले कीजिए, हम जरा सुने आपका प्ले किए हुए गाना।
4: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 94.4 FM में।
0: थैंक यू मैम, आपको भी बरसात मुबारक।
1: जी जी, बरसात आपके उधर भी हो रही है क्या?
0: बहुत अधिक, आज तो रेनकोट पहन के आए हैं काम पे।
1: अच्छा, चलिए
0: आ गए, टाइम पे ही आ गए थे, बारिश हो रहा था।
1: जब रेनकोट पहन के आना है तो आदमी टाइम पे आएगा।
0: हाँ, और आज हमें एक भजन सुनना है।
1: जी बिल्कुल, बताइए कौन सा भजन सुनना है।
0: संजय मित्तल का गाया हुआ है, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, जिंदगी अब तेरे नाम है सांवरे।
1: जी, और सुनाना भी है।
0: हाँ, सारे लिसनर्स लोग को। और जमाना बहुत खराब चल रहा है, लग रहा है कि अब भगवत भक्ति ही आदमी का मतलब अंतिम सहारा है,
1: तो यही होगा।
0: वही चीज लगातार अखबार में वही चीज सुनने देखने को पढ़ने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पे भी वही चीज आ रहा है ज्यादातर।
1: वही चीज है एक, ठीक है फिर।
0: ठीक है
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुने कॉल।
0: थैंक यू मैम।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो,
5: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो,
4: भागे भागे फिरते हैं।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
8: नमस्कार मैडम।
7: नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
8: नाम मनोज कुमार
7: जी,
8: हम मुंगेर जिला से बोल रहे हैं।
7: कैसे हैं?
8: ठीक हैं।
7: तो क्या हो रहा था?
8: क्या हो रहा था, बगीचा में बैठे हैं, रखवाली करते हैं। अपने क्षेत्र का कुछ जानकारी हम आपसे साझा कर सकते हैं?
7: जी बिल्कुल कर सकते हैं।
8: देखिए, हमारे गाँव के बगल में एक घोड़ाखुर पहाड़ है, जिसका पौराणिक गाथा है कि जब दशरथ जी घोड़ा छोड़े थे तो वो घोड़ा जो था वही पहाड़ पे आके रुका था, तो उसका पद चिन्ह अभी तक यहाँ है।
7: अच्छा अच्छा,
8: उसी के नाम पे इस पहाड़ का नाम घोड़ाखुर रखा गया है। और वहाँ पर एक भोले बाबा का मंदिर है, वहाँ का मनोकामना सिद्ध होता है, जो भी कोई वहाँ जाके मांगते है ना, का मनोकामना सिद्ध होता है उस मंदिर में। बगल में झील है, बहुत सुंदर झील, बहुत अच्छा देखने में लगता है। 1 जनवरी को लोग वहाँ पिकनिक करने भी जाते हैं।
7: ये बढ़िया जानकारी दी है, कभी घूमना हुआ तो फिर आदमी आ सकता है उधर।
8: हाँ आइए, बहुत अच्छा घूमने का जगह है यहाँ पर। पानी इतना अच्छा गिरता है ना ऊपर से झरना, कहते हैं कि अगर किसी को खुजली उजली हो गया है, कुंड में नहा लीजिए तो ठीक हो जाएगा।
7: अच्छा,
8: हमारे पहाड़ का यही विशेषता है मैडम। गाना हमको सुना दीजिए आज
7: जी,
8: दोस्ती का, गुड़िया कब तक रूठी रहोगी।
7: सुनवाना भी है?
8: सुनवाना है आपको, सरिता देवी को और सिंधिम के सारे श्रोतागण को। ठीक है, प्रणाम मैडम, गाना सुना दीजिए
7: जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल किया।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।
1: Now pick your phone up. Hello. Pick it up. Hello. Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
1: थैंक यू
2: जी। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: जी रियाज अंसारी सिवान।
2: जी जी, क्या हाल चाल है?
1: हाल चाल बढ़िया है, यहाँ तो कंपटीशन हो रहा है कॉल लगाने के लिए।
2: चलिए तो कंपटीशन में आप जीत गए लग रहा है।
1: मैं फोन किया।
2: चलिए बढ़िया है, तो बता दीजिए।
1: पहली बार भी किया था तो 75, अभी 76।
2: चलिए बढ़िया है, लग गया ना?
1: हाँ लग गया जी, लग गया। लड़ाई पे जा रहे हैं, माँ करेंगे, माँ करेंगे।
2: चलिए तो आपको उधर भी बारिश हो रही है?
1: नहीं, हमारे और इधर हम बेंगलोर में है ना, अभी फर्स्ट टाइम फोन किया था आपको, ये सेकंड टाइम है। तो इधर तो दिन में धूप होता है पर हाँ। माशाल्लाह रात को बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। अब बारिश भी रात को ही होती है, दिन में कमाओ रात को सो जाओ।
2: बढ़िया है, रात को बारिश होती है तो कोई टेंशन नहीं रहता, अपने घर में सब कुछ रहता है।
1: उधर तो गाँव में तो पूरा आंधी तूफान, क्या क्या किसी का सामने आना, टेंट सब उड़ जाए।
2: आज तो बहुत सारा इधर लगन है और देख रहे हैं कि सुबह 10 बजे से बारिश इतनी कंटिन्यू हो रही है।
1: हम भी मिस कर रहे हैं बहुत अपने गाँव की वहाँ।
2: चलिए तो गाना कौन सा सुनना है?
1: गाना हमें सुनना है वो मेरे आने पे खिल जाना तेरा, और मेरे जाने पे रुक जाना तेरा, याद है ना
2: जी। और डेडिकेट भी करिएगा।
1: हाँ करेंगे, आकाश, सैनुल्ला, मुस्कान और शहजादी।
2: चलिए तो प्ले करे गाना आपकी।
1: और एक बात, मैम कुछ बोल सकते हैं शहरी वगैरह? क्योंकि
2: बिल्कुल कुछ भी बोल सकते हैं जिससे सुन के किसी को आपत्ति नहीं हो, किसी को
1: नहीं,
2: मतलब मैं आपको बोल रही हूँ किसी को दुख ना हो, बाकी आप सब कुछ बोल सकते हैं। और गाने में भी कोई ये नहीं है, गाना बस जातिवाद नहीं होना चाहिए, धार्मिक गाना नहीं होना चाहिए, बस
1: वो सबसे दूर रहते हम, लड़ाई झगड़ा से क्या मतलब। तो हम यही कहना चाहते कि हमारे हेड सॉन्ग के साथ में एबी बज जाए, मांगा था खुशी आशियाने की चल पड़ी आधिया जमाने की, मांगा था खुशी आशियाने की चल पड़ी आधिया जमाने की, मेरा दर्द कोई समझ ना सका क्योंकि हम याद देते हमेशा मुस्कुराने।
2: जी जी,
1: बस इतना ही, थैंक यू।
2: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी चॉइस में कॉल किया।
1: थैंक यू मैम,
2: वेलकम।

तो दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माई चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाजत और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: क्या बोले थे? बुलाती है मगर जाने का नहीं।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

राम की बाल लीलाओं से आनंदित अयोध्या निवासी उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। उन्हीं दिनों महामुनि विश्वामित्र अपने आश्रम में जप तप यज्ञ और योग करते थे, किंतु मारिच तथा सुबाहु जैसे राक्षस उनकी साधना में विघ्न डालते। मुनिवर के मन में ऐसा विचार आया कि इन पापी राक्षसों का संहार केवल भगवान के हाथों ही हो सकता है। अतः एक दिन वह राजा दशरथ की राजसभा में पहुंचे।

महाराज सुबाहु सहित अन्य राक्षसों के उपद्रव से मुक्ति पाने के उद्देश्य से विश्वामित्र ने राजा दशरथ के सम्मुख उपस्थित हो राक्षसों के संहार के लिए छोटे भाई लक्ष्मण के साथ श्री रघुनाथ जी की याचना की। बोले, इनके द्वारा राक्षसों के वध होने पर वह निरापद हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर महाराज दशरथ के मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई। वह मुनि के चरणों में धरती, गोधन, राजकोष, अपना सब कुछ अर्पित करने को प्रस्तुत थे, किंतु प्राणों से भी अधिक प्रिय राम को मुनि को देते किसी प्रकार नहीं बनता। ये सुकुमार किशोर भला किस प्रकार राक्षसों का सामना कर सकेंगे? तब गुरु वशिष्ठ ने अपने वचनों द्वारा राजा दशरथ का संदेह और अज्ञान दूर किया। राजा ने अपने दो पुत्र मुनि विश्वामित्र को सौंप दिए। पुरुष रूप में दो सिंह श्रीराम और लक्ष्मण मुनिजन के कष्ट हरने चले। श्याम और गौर वर्ण के दो परम सुंदर किशोरों के रूप में मुनिवर को जैसे दुर्लभ निधि प्राप्त हो गई हो। राह में ताड़का वध करते हुए दोनों भाई मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने ऐसी विद्या प्राप्त की जिससे भूख प्यास न लगे तथा शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो।